रंग में जलते रहे। क्या हुआ ये मुझको क्या हुआ है, और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहते है।

लाखों है निगाहों में जिंदगी के राहों में पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये एक मोहब्बत भरी और ये गीत है एक बार ना एक बार बार बार बार बार माइज मुकेश और करोड़ों को चुराने वाला करोड़ों का दिल चुराने वाला माइटी मुकेश और आशा जी आ रहा है एक बार ना सौ बार।

माइल की बुकेर आशा जी का ये दिल लेकर नजराना का ये सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं कोई जलवा का ओर और वो है पद्मांश श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है और इस गीत को बेटी और बेटा का सुनना चाहिए मूवी का नाम है दोस्तों।

अगर तेरी जलवा खुदाई न होती तो क्या क्या होती। उसके बाद हम चलते हैं कि मेरे दिल रुबा ना गुस्सा, मेरे दिल रुबा मुझ पर खफा न हो। पद्माश श्री मोहम्मद रफी का ये पुराना सॉन्ग है दोस्तों, नुपर मोफी है दोस्तों। तो ये गीत आपको हम सुनाए जाते हैं, आओ सुना जाए।

मोहम्मद रफ़ी, परमा श्री मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ मुकेश माई थी मुकेश के भी गीत बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो एक माई थी मुकेश का भी हो जाए। ठोकर मौफी का नाम है, नेखती सेवन तक का ये हिट सॉन्ग है।

गीता दत्त लता जी का ये सॉन्ग है और इसमें काम किया है राज कपूर पद्मिनी के साथ हम चलते हैं एक मनोज कुमार और मल्हार सिन्हा का मूवी जिसमें जिसमें माइती मुकेश भी अपना अपना गीत को गाया है और वो है हरियाली और रात।

बोल मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। मूवी के नाम है हरियाली और रास्ता। सुनाएंगे महेंद्र कपूर का ये और एक सुपर हिट सॉन्ग है लाइफ लाइफ लाइफ ऑफ खनो वुमेन्स।

और एक लाइव सॉन्ग थे महेंद्र कपूर का सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, मूवी के नाम है हरियाली और रास्ता, जिसमें मनोज कुमार मल्हा सिन्हा ने काम किए हैं। करोड़ों का दिल चुराने वाला मैथी बुकेर ए नाइटिगेल लता जी का ये सॉन्ग है।

एक मगर ढूंढे ना मिला, मूवी का नाम है हरियाली और रास्ता ओल्ड इन गोल्ड। दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी का नाम है जांजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

और दर्द करने को ये सॉन्ग दे और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नेक तक का सोन और वो कुछ और थे और इन गोल तो और कुछ है दोस्तों, और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जोंग और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है जाजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और मैं दी मुगेश का ये सॉन्ग है।

और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

भी अपना दिल उसी को दीजिए जिस इस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांझ करते हैं तो हम चलते हैं, मौफी के नाम है भरोसा, निकट होंद द्रियन सस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: tip.
1: Zo, die kan wel een cool best prot.
2: Yes, doosto. तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निगेटिव द्री एंसेस्टर का, बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जैसे दूर कोई गाए धुनिए।

और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मन और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है। और आप लोग जानते हैं कि पुराने गीतों की मजा कुछ और है हमारे जनता। और हम चलते हैं, मीना कुमारी का एक फिल्म है, मीना कुमारी का एक फिल्म मौफी का नाम है, मौसी का नाम है बैजू भौरा। नेहित इन्होंने 2005 तक में एक सुपर हिट फिल्म ये थे। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं दोस्तों।

बता जी का ये सॉन्ग थी। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, महेंद्र कपूर का और आशा जी का ये सॉन्ग है। और दोस्तों ये भी एक ओल्ड एंड गोल्ड पुराना फिल्म का ये सॉन्ग है, और यानी कि मूवी का नाम है पुराना घुमरा। आशा जी एंड महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

मुझको मन फन तुझको मेरा प्यार पुकारे मूवी के नाम है घुमरा। अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं और आप लोग जानते हो एक भी सुपर हिट सॉन्ग है ये, आओ सुना जाइए क्या कहते हैं हमारे दोस्तों।

ये तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो, अगर आपको ये पता होगा कि तुम और हम कौन हैं तो आप जरूर हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 2 0 7 7। हमारा लाइव आप लोग हमें तार कर सकते हैं रेडियो फोन के माध्यम से। तो हम अगला गीत के ओर चलते हैं। नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। 1965 का ये क्लासिक सॉन्ग है।

समझी मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। दोस्तों, तो अगर आप चमेली को जानते होगे तो जरूर आप हमें तार करके बता सकते हैं कि चमेली कौन थे। दोस्तों, कौन थे ये चमेली, कौन थे दोस्तों चमेली? अगर आप चमेली के जानते नहीं होगे तो इस गीत से आपको पता चलेंगे कि चमेली कौन थे। और है आशा जी और परमा श्री मोहम्मद रफी का ओल्ड हिंदी एवरग्रीन सॉन्ग।

तले और दोस्तों दोस्तों दोस्तों तो एक गीत यहां से है और मूवी के नाम है प्यार किया तो डरना क्या। परमा श्री मोहम्मद रफी का निगत द्रिय सष्ट का ये जो है।

और जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। मूवी का नाम है प्यार किया तू डरना क्या, लेकिन जो अगर प्यार किया है तो डरना नहीं है, लेकिन झूठ भी मत बोलना, झूठ भी मत बोलना। झूठ बोलने पर सजा मिल सकते है। और मूवी का नाम है तीसरी कसम।

तो आपको तो कहीं जाकर फरखलारिंग देना पड़ेगा, और वो कहां पर जाकर देना पड़ेगा इस गीत ने आपको बताए है। मूवी के नाम थी तीसरी कसम राज कपूर, मैं मुकेश कहा गया हुआ जो है। और उसके बाद तो हम चलते हैं एक और ओल्ड एंड गोल्ड, करोड़ों की चुराने वाला, The Heart of Millions, Mighty Mukesh.

धीरे रे चलो मेरी बाकी रनिया के बाद हम चलते हैं दादा हेमंत कुमार की ओर रे। और दादा हेमंत कुमार भी बहुत बेमिसाल गीत को गाए है। मूवी का नाम है बीस साल।

जिससे दूसरों का हित होता है वही कर्तव्य होता है, और जिससे किसी का भी अहित होता है वो अकर्तव्य होता है।

जिस प्रकार आकाश में वृक्ष जितना ही ऊंचा उठे उसकी कोई सीमा नहीं है, इसी प्रकार मनुष्य की उन्नति की भी कोई सीमा नहीं है।

संसार के सभी संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, न कि अधिकार जमाने के लिए, सुख देने के लिए है, न कि

चार वर्णों और आश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, और जो कर्तव्य से गिरा हुआ होता है वो छोटा हो जाता है। आइए इस भजन के माध्यम से सुनिए।

परमात्मा सब देश काल आदि में परिपूर्ण है। संसार के सत्यता मानने से ही मनुष्य परमात्मा से दूरी का अनुभव करता है।

विश्व के सभी प्रेमी भक्त आत्माओं, जैसे कि आपको मालूम है कि ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है, इसीलिए आप इस लंका कांड को सुनकर अपने जीवन की सारी बुराइयों को दूर करें। तो आइए शुभारंभ करते हैं श्री रामायण का छठा कांड यानी लंका।

संयोजन के समुद्र पर नवनिर्मित सेतु की सुंदरता को निहार कर भगवान श्री रामचंद्र जी भाव विभोर हो उठे और बोले, इस स्थान की महिमा अवर्णनीय है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। और वहाँ श्री रामचंद्र जी ने विधिवत शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना की। इस स्थान का नाम रामेश्वर नाम से प्रचलित हुआ, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वर की स्थापना करके प्रभु श्री राम जी ने सेना सहित सेतु पार किया और सुवेल पर्वत पर डेरा डाल दिया। उधर रावण की पत्नी मंदोदरी को जब पता लगा कि समुद्र पर सेतु बनाकर श्री राम जी वानर सेना सहित लंका के निकट आ गए हैं, तो वो रावण को यूं समझा,

प्रभु प्रेमियो, जब सुवेल नाम के पर्वत पर बैठे प्रभु श्री राम जी ने विभीषण, हनुमान, जामवंत आदि से आगे की रणनीति के विषय में पूछा, तब जामवंत जी बोले कि हे करुणा यतन, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, मेरे विचार से बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा जाएगा। भक्त जनों, जामवंत की ये बात सबको ठीक लगी। तब श्री राम जी वीर अंगद को निकट बुलाकर बोले, हे बाली कुमार वीर अंगद, तुम मेरे कार्य से लंका जाओ और रावण को इस प्रकार समझाना जिससे उसका कल्याण हो और हमारा भी कार्य बन जाए।

सज्जनों, राजमद में चूर रावण को बाली पुत्र वीर अंगद ने भांति भांति से समझाया, प्रभु श्री राम जी के नाम का प्रताप बतलाया, प्रभु के बल का भय दिखलाया, परंतु काल के वशीभूत हुए रावण ने एक भी नहीं मानी, एक भी नहीं सुनी, बल्कि अंगद के सन्मुख अपने बल का वर्णन करने लगा। परंतु कुमार अंगद ने जब कहा कि हे रावण, तुम वही बलवान रावण हो जो मेरे पिता बाली की कांख में 6 मास रहे, तुम वही पराक्रमी रावण हो जिसे पाताल लोक में बच्चों ने बंदी बनाकर घुड़साल में बांध दिया था। हे रावण, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं। तब क्रोध में आकर रावण अपने राक्षस वीरों से बोला,

राम भक्त जनों, वीर अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया और बोला, हे रावण, यदि तुम सब ने मिलकर भी मेरा पांव हटा दिया तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। प्रभु श्री राम जी यहां से वापस लौट जाएं। जय हो। भक्तजनों, ऐसी अटल घोषणा वही कर सकता है जिसको श्री रामचंद्र जी पर अटल भरोसा हो। परंतु मेघनाद आदि वीरों पर जब अंगद का पैर हिला भी नहीं, तब रावण अंगद के पैर की ओर बढ़ा तो अंगद ने कहा, हे रावण, श्री राम जी के पैर पकड़। तो प्यारे प्यारे भक्तों, रावण

प्रेमी भक्तों, जब हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी को बाहों में उठाए प्रभु श्री राम जी के सम्मुख आए तो श्री राम जी पर मानो वज्रपात हुआ। प्रभु के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तब जामवंत के कहने पर लंका से सुसैन वैद्य को लाया गया। सुसैन ने नाड़ी परीक्षण के पश्चात बतलाया कि द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी यदि रात रात में लाई जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। भक्तों, तब पवन पुत्र श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने चल देते हैं। उधर रावण ने कालनेमी नाम के मायावी राक्षस को हनुमान को रोकने के लिए

श्री राम जी के प्रिय भक्तों, जैसे ही भरत जी ने आकाश में देखा तो उन्होंने समझा कोई निशाचर अयोध्या नगरी पर पर्वत गिराना चाहता है। तब उन्होंने बिना फर का बांध चलाया जो हनुमान जी को लगा, और हनुमान जी श्री राम कहते हुए भूमि पर गिर पड़े। जब भरत ने श्री राम शब्द सुना तो दौड़कर हनुमान जी के निकट पहुंचे और पूछा कि हे भाई, तुम राम नाम उचारने वाले कौन हो? तब हनुमान ने सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा आदि की सारी कथा भरत जी को सुनाई। तो भक्तों, भरत जी को बहुत दुख हुआ और भरत जी बोले,

प्रभु श्री राम जी ने भाव विभोर होकर अंजनी लाल श्री हनुमान जी को गले से लगा लिया। उधर रावण को ये समाचार मिला कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए हैं, तो उसने अपने भाई महाबली कुंभकर्ण को जगाकर सारी कथा सुनाई। तो कुंभकर्ण बोला, हे भाई, तुमने जगदम्बा सीता का हरण करके ठीक नहीं किया, परंतु अब क्या विचार करना। और ये कहकर कुंभकर्ण युद्ध स्थल में पहुंच गया। कुंभकर्ण के अरण कौशल और बल के सम्मुख वानर भालू अधिक देर नहीं टिक पाए, तो श्री रामचंद्र धनुष बाण लेकर

प्रेमियों, जब रावण के पास कुंभकर्ण वध का समाचार पहुंचा तो रावण अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगा। तभी मेघनाद ने राक्षस राज रावण को धैर्य बंधाया और रात व्यतीत होने पर सुबह होते ही मेघनाद युद्ध के लिए चला। युद्ध भूमि में पहुंचकर महाप्राकर्मी मेघनाद ने श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया। तब जामवंत ने मेघनाद का पैर पकड़ घुमाकर लंका में फेंक दिया। उधर नारद जी के कहने पर गरुड़ जी ने आकर श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी को

तो सज्जनों, रावण सुत मेघनाथ के मरने के खबर सुनकर देवलोक से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व श्री

मंदोदरी एवं सुलोचना आदि बिलक बिलक कर रोने लगी। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना मंदोदरी से बोली,

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात करुणा की मूर्ति है। जो उनसे वैर बढ़ाता है प्रभु उसे भी क्षमा करके निज धाम प्रदान करते हैं। रावण सुत मेघनाद ने सदैव श्री राम प्रभु को अपना शत्रु माना, परंतु फिर भी दया सागर दीन बंधु श्री राम ने उसे अपने वैकुंठ धाम भेज दिया और मेघनाद की पत्नी नागकन्या सुलोचना जब अपने पति के शीश के साथ चिता में जल सती हो गई तो उसे भी प्रभु ने अपने पावन धाम में

प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, जब प्रभु श्री राम जी रावण के साथ युद्ध करने के लिए चलने लगे तब विभीषण बोला, हे नाथ, आपके पास ना तो रथ है ना कवच है, तो बलवान रावण से आप युद्ध कैसे करेंगे? तो प्रभु श्री राम जी बोले, हे तात, सुनो, जिससे विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही है, शौर्य धैर्य उसके पहिए हैं, सत्य शील ध्वजा है, बल विवेक दम पर उपकार चार घोड़े हैं, ईश्वर भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, विज्ञान ही धनुष है, निर्मल मन तर्कस है, सिद्ध ब्राह्मण एवं गुरु का पूजन अभी

विश्व के सभी प्रेमी भक्त आत्माओं, जैसे कि आपको मालूम है कि ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है, इसीलिए आप इस लंका कांड को सुनकर अपने जीवन की सारी बुराइयों को दूर करें। तो आइए शुभारंभ करते हैं श्री रामायण का छठा कांड यानी लंका।

संयोजन के समुद्र पर नवनिर्मित सेतु की सुंदरता को निहार कर भगवान श्री रामचंद्र जी भाव विभोर हो उठे और बोले, इस स्थान की महिमा अवर्णनीय है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। और वहाँ श्री रामचंद्र जी ने विधिवत शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना की। इस स्थान का नाम रामेश्वर नाम से प्रचलित हुआ, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वर की स्थापना करके प्रभु श्री राम जी ने सेना सहित सेतु पार किया और सुवेल पर्वत पर डेरा डाल दिया। उधर रावण की पत्नी मंदोदरी को जब पता लगा कि समुद्र पर सेतु बनाकर श्री राम जी वानर सेना सहित लंका के निकट आ गए हैं,

0: नई सुबह का नया नजराना, ठंडी हवा लेके आए पैगाम हमारा। जागो, उठो, तैयार हो जाओ, खुशी से भरा रहे आज का दिन तुम्हारा।
1: सुबह सुबह ले शिव का नाम।
0: आप सभी को राम राम, नमस्ते।
1: तेरे का
0: धर्म करम फाहन हिंदुस्तान रेडियो के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।
1: कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः।
0: आप सभी को फाहुन के फुल टीम की ओर से एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ।
1: ओम नमः शिवाय।
0: ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का दिन अच्छा से बीते और खुशी से प्रगत होए। जो भी करना है भाइयों बहनों, सोच समझ के कीजिए। सभी धर्म प्रेमियों को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।
1: लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम।
0: अगर आप ये धर्म करम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का भजन कार्यक्रम स्पॉन्सर करना चाहते हो तो आप तार कर सकते हैं 9 सीफ तक 3 सी फिर सीफ पर।

कृष्ण सरनम ममा कृष्ण भजन के बाद श्री राम के गली में तुम जाना श्री रामचंद्र के भजन आप सुनेंगे। आप चाहते जहाँ जहाँ राम भगवान होता है वहाँ साथ साथ हनुमान स्वामी भी रहता है।

एक गली में तुम जाना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर चुन है धर्म क्रम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सुबह के भजन के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। सभी भक्ति प्रेमियों के लिए अब की बार मैं चुन के रखा हूँ शिव भजन। हम भोले है तुम भोले नाथ, भक्ति न जाने पूजा न जाने, हरिओम शरण जी के आवाज में।

भोलेनाथ भोलेनाथ जय शिव शंकर भोलेनाथ। धर्म कर्म फाउंड हिंदुस्तान रेडियो के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे। अगर आप ये भजन कार्यक्रम स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 C 5 2 8 2 8 4 C पर आपको तार करना है। सभी साई भक्तों के लिए हरि ओम साई ओम।

हरिओम हरिओम हरिओम साई ओम। अगर आप नौकरी पर जाने की तैयारियाँ कर रहे होगे तो आराम से कीजिए, और नौकरी का काम शुरू कर दिए होगे तो आप प्रेम और प्यार से नौकरी कीजिए। आप सभी को फागुन के टीम की ओर से एक शुभ दिन प्रगत हो। देवी माता की भजन प्रोग्राम में चलेगा हरिओम शरण की आवाज़ में।

ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, आंख खोली तो सभी सपने टूटे। यही तो सपने होते हैं दोस्तों, कभी कभी सपना भी हकीकत हो जाता है। यकीन कीजिए, अगर आप सपना देखा तो वो हकीकत हो जाता है, लेकिन अगर आप सपना देखा कि लॉटरी खुल गया तो वो बहुत ही मुश्किल पड़ता है, वो सपना जल्द सच नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिसका ये सपना सच हो जाता है। आप सभी को एक शुभ दिन प्रगत करते हुए मैं चॉइस करके रखा हूँ आप सभी के लिए ये सुबह का प्रोग्राम में ये सॉन्ग।

हर एक काम के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से 9 से 7 तक 375-2-2-4-7 हमारा तार का नंबर है। दोस्तों अगर आपको बाहर निकलना है तो ध्यान रखना, एक छतरी आपके पास हो तो ले लेना पारपली, इसलिए कि कभी कभी बारिश गिर रहे है। फाहुन के टीम की ओर से आप सभी को एक शुभ दिन प्रगत हुए।

0: छोड़कर तेरे प्यार का दामन, क्या पाठ है दोस्तों। हर एक काम जो आपका रेडियो के शेयर करना आप कौन तक कर सकते हैं, हमारा दफ्तर से न्यूज सीफन तक 375 तुई तुई फिर सीफ पर आपको तार करना है।
1: तो हम

बस बस बस तुम्हीं पे तो हो गए मैं आशिक, बुरा मानो या भला मानो ये आपके बस में है, आपके बात है। आप सोचिए आप भला चाहते हो या बुरा चाहते हो, खूब दो बार सोचिए दोस्तों, तो उसके बाद जवाब जोड़ देना। इसलिए कि प्यार खिलौना नहीं है।

0: नैनों में दर्पण है, क्या क्या नहीं है दोस्तों। अब की बार मैं चॉइस करके रखा हूं, मेरा मन तेरा प्यासा।
1: मेरा मन तेरा
0: इस सॉन्ग के बाद रिक्लामा चलेगा।

Wachker, Charmin Birga, 4 minuten over 9. Afrika Happy Station, Favon Hindustani Radio. कितनी हसरत है हमें, क्या ये बात सही है? मिस्टर सानू एंड साधना सरगम.

छोटा सा स्पॉट बरिश था दोस्तों, लियोनेल मेसी 39 साल का जो है बेस्ट स्पीलर फ्रॉम द वर्ल्ड, आख फाउड बेस्ट फुटबॉलर फ्रॉम द वर्ल्ड जो है, तो वो ऑफ स्केट ले लिया है और 6 अक्टूबर को वो लास्ट वेस्ट रेट एक फ्रेंच क्लब पर वेस्ट रेट अर्जेंटीना के साथ खेलेगा। उसके बाद वो ऑफ स्केट ले लिया है, वो इंटरनेशनल वेस्ट रेट नहीं खेलेगा। 39 साल के है आदमी और 8 बार दोस्तों बेस्ट फुटबॉलर फ्रॉम द वर्ल्ड ये हुआ है, क्या बात है। और स्पॉट बरिश तक कल के बात है, कॉम्पिटिटिव फास्ट जो यूरोपा लीग का है उसमें आसेट स्विट्जरलैंड से 0-3 से हार गया है। फेफन सेस्टिक सेमिनिज में 1-0 स्विट्जरलैंड पाया और 1-0 वहाँ से खेल ख़त्म हुआ है। और स्पॉट बरिश तक देखा जाए तो आज के बात है, आज NEC Juventus से खेलेगा 9 बजे रात्रि को। Juventus देखें NEC, ये भी यूरोपा लीग का मुकाबला है। और जब कल शुक्रवार है तो Eredivisie में या फ्रिंदन लोतराई Eredivisie में FC Groningen पैक सोलो मुकाबला करेगा। उसके बाद शनिवार 7 तारीख को आरो डेन हाग FC कामबुर, स्पार्टा रोटरडाम FC हेरेफिन, आयक्स एक्सेल्सियर, विलम टू फोर्टिना सीतार। सोमवार रविवार को फेनवर्ड FC इतरेख आज टेलस्टार FC ट्वेंटी PSV और आखिरी में NEC गोहद ईगल से मुकाबला करेगा। इस वक्त रंग लिस्ट पे देखा है तो स्थान किस तरह से है, नंबर तीन पर है PSV पेंटर आसेट नंबर टू सेम पेंटर उसका दूर साधु कमती है। नंबर थ्री पर है फेनवर्ड फेस्टिंग पेंटर, फिर पर है आयास डेटिंग पेंटर, नंबर फाइव FC ट्वेंटर एक्सेस वेस्ट राइडर ओक डैटिंग पेंटर, नंबर सेस पर है एक्सेल्सियर एक्सेस वेस्ट राइडर टिंग पेंटन। जब कोई बात बिगड़ जाए और मुश्किल पर जाए फिर क्या होता है दोस्तों, आप गीत सुनकर खुद जान जाएंगे।

0: जब कोई बात बिगड़ जाए दोस्तों, एक दो चटनी सुखा हो जाए। हमारा अपन गायक है देवेंद्र सिंह शिवनाथ, वो फरमाएंगे बटरफ्लाई।
1: Let's dance.

पोकेमोन का कारोबार आप जानते हैं, एक राष्ट्र था एक समय पे, लोग चारों बगल पोकेमोन खोजे रहते रहते। तो अब क्या हुआ है, पोकेमोन का लीफ हैबर जो है वो नया कलेक्सी खोज रहा है। लगभग 4000 एरों में एक दो कलेक्सी ये सब खरीदते हैं, और लेडन में कहीं कहीं पर दुकान के सामने लंबा लंबा रेल लगा हुआ है ये पोकेमोन के जो सरंजाम है, जो है ना लीफ हैबर्स है, ये पोकेमोन का कार्चेस खरीदने के।

सो कल के बाद है मालीफेल पर, वहाँ पर रैली हुआ है। आप जानते हैं मालीफेल पे हमेशा डेमोंस्ट्रेशन रहता, तो वहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन था और एमए इनक्रेप किया है। तो ये रैलर्स जो है वो पॉलिसी औतुर पर, पॉलिसी की मोटर कार जो है उस पर कूड़ा है, और एक सिपाही को भी मिसहैंडल किया है, पॉलिसी बेस्ट को भी तोड़ा फाड़ा है। तो सिपाही वाटर कूलर से ये सभी को बाहर किया है। कोसोफो को, कोसोफो का जो रहने वाले हैं हॉलैंड देश में, सब वहाँ पर हड़ताल किया है, एक कल के बाद है।

सिक्किम बेबी सिक्किम दोस्तों, सिक्किम बेबी सिक्किम छोड़ के हम जाते हैं मनवा लग जाए। आफ्रीका हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। अभी 10 बजे के बाद नहीं, अभी 12 बजे। जी हाँ दोस्तों, 12 बजे उस्ताद गंगा के सरिया प्रोग्राम सुनेंगे। मजा फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो पर चू रही है।

बिया और रूबिया। दोस्तों कार्तर कड़मा अन ताकी मिनो लोबियू, हा सुमा ताकी मिनो लोबियू, मिलो बियू थ्रू।

मिक्सी पोकू चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात, ये सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों। जगना और जगाना, राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

टोन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक, भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज।

सोका चटनी आप सुनेंगे। सोका चटनी में ओल्ड स्कूल सोका में बेस्ट ऑफ ओल्ड स्कूल सोका

द मैरी मैन विद बिग बाम्बू, आपको याद है दोस्तों, बीते हुए दिनों में सुनाम देश में जब कैरमस लगता था करम कंपैक पर, तो वहाँ लोग जाकर रे में खड़ा होकर टिकट खरीदते थे। सुंदर पोपो आते थे, त्रिनिदाद टोबैगो से आते थे गवैया, और ये गीत हमेशा कैरमस पे गाया जाता था। द बिग बाम्बू हम सब मिलकर सुनेंगे।

बिग बाम्बू द मैरी मैन की आवाज में भी आपने सुना, तो सबकी बार हम चला जाते हैं सुरनाम देश। और सुरनाम देश के कौन गवैया है? मिस्टर रोमियो दंग कमला कॉम लेट वी गो।

Hi, hi, Kamli, come, let me go. Nobody like to go. अब की बार आशनी माता दिन. अपन आशनी है दोस्तों हॉलैंडेस का और आशनी फरमाएगा तोरे बंगले आशनी माता दिन के आवाज में.

आशनी मतादीन नजर लागे तेरे बंगले पर। दोस्तों हमाम स्टोरीज, हमाम स्टोरीज ब्रदर लिव्ड, क्या फरमाएंगे खुद सुनिए।

0: नवा राय
1: एक्सक्लूसिव वॉल्यूम 14 लाठी ना टूटे फसील के आवाज में।
2: अरे हाय रे, सुनिए रे हेंड्रिक्स चूज़वा।
3: आई बॉय नाउ इट इज़

चाहे ऐसा न हो कि लाठी टूट जाए और सांप न मरे तो क्या होगा दोस्तों, सांप आपको लपेट लेंगे। नो मर्सी चटनी मैच

कॉफी का हैप्पी स्टेशन 5 ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम।

प्रोग्राम में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ, चटनी सॉन्ग तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। Let's dance.

चटनी सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए क्या बात है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग सब तो तैयारियां कर दिया है उतार के बिग दिया है दोस्तों डांस कर रहा लेट्स डांस

इस ताम ताम भोजपुरी सॉन्ग चलेगा। आप एक हैप्पी स्टेशन फाइव ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, वह प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ साहब यूसुफ भी बैठा हुआ है।

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रवि सिंह एंड नादिया सिंह, दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

0: हाँ प्रोडक्शंस।
1: लेग डाउन मी नानी, कार्लेस ड्राइवर द्रौपदी के आवाज में आप सुनेंगे।
0: My,
1: Let's dance।

की बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग साउथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा निहरी सिविल शास्त्र के बात है जब ये सुनाम देश आया और उसी समय पर एक बार बना था जिससे पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पता पता।

0: हीलियम बकेबा के बाद हिंदी बबलिंग मैशअप धीरज सक्सेना एंड नाथान शो टाइम शो टाइम शो टाइम दोस्तों
1: 6 million ways to die choose one

जीते हों किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज़ की लय इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वाले को सेवा में सादर साहब प्रेम नमस्ते आदाब हो। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है पर वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीब 3 मिनट व्यतीत हो चला है 12:03 को फुटवाल ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाफ शहर से। जो बीमार लाचार है तंदुरुस्ती के दुआ प्रार्थना है। जिसके घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे भैया राजेंद्र द्वारका जी का। भैया राजेंद्र द्वारका जी आपको हृदय से धन्यवाद दिया जा रहा है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको एक शुभ शाम पेश हो। भैया राजेंद्र द्वारका थैंक यू।

जी हाँ, दौंदर दाख है। जी हाँ, दौंदर दाख है 17 सितंबर। आप तत्पर हैं जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। मैं रहूँगा करीबन 3 बजे तक रहूँगा आपसे लेकर 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद हमारे सभी सहयोगी आपके सेवा में रहेंगे। तो लीजिए, यहाँ से पेश कर रहे हैं पहला सेलेक्शन, इस तरह से आ रहा है एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

और जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत। हमने पेश की आरती बर्मन के साथ पर ये टाइटल सॉन्ग नेगदीन द्रियन तख्त का अगर तुम ना होते फिल्म का नाम है। चलिए आप तत्पर हैं, आप जहाँ भी होंगे ये जो भी कर रहे होंगे आपका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं, देखते हैं जी हाँ मैथिली मुकेश इस तरह से फिल्म छाया में से निकाले हैं निगति एन सस्त 1961 का ये गीत।

मैं तो मुकेश और लता जी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म छाया में से निकाल कर सलील चौधरी के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, वो है रफ़ी साहब की, और रफ़ी साहब का ये गीत फिल्म साजन की सहेली में से, फिल्म साजन की सहेली में से निकाले हैं उषा खन्ना के साज पर। बहुत दिन हुए ये गीत हमने भी नहीं सुने हैं, चलो मिलकर सुनते हैं ये प्यारा गीत।

बूंदे सभी सितारे, ये प्यारा गीत सुनाया गया आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। फिल्म साजन की सहेली में से निकाल कर हमने पेश किए उषा खन्ना के साज पर। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी एक बार फिर।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ अफिलियंस दोनों मिलके सुनाए हैं ये द्वैत हमने पेश किया फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपका हृदय से स्वागत है, आप जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत। आशा जी और रफी

क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाएं कुर्बानी में से निकाले हैं इंडिवर के लिखी हुई गीत, कल्याण जी आनंद जी के साज पर चला ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम सुना रहे हैं आपको आशा जी और भूपेंद्र की, जी हाँ, बप्पी लहरी के साज पर ये है।

वो प्यार के लिए जिससे हमने छोड़ दी है दुनिया, भूपेंद्र और आशा जी मिल के आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, देखते हैं फिल्म बंदिश। फिल्म बंदिश में से निकाले हैं 1980 का ये गीत, और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ।

0: कोई बात छेड़ो फसाना बना दो। आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। चलिए देखते हैं लाइन पर कोई है। एक मोमेंट। फोन हिंदुस्तानी रेडियो खुद रावन।
1: क्या खुद मेरा भैया गंगा नमस्कार।
0: खुद मेरा भैया राजन नमस्कार। कैसे समाचार हैं?
1: मोई चले चले गंगा मोई बढ़िया।
0: तब मोई ईसाई तू बाटे सर्कल में।
1: हाँ हेलो सर्कल में।
0: अब सब दोस्तों साथी हुआ बैठल है।
1: हाँ हेलो छः साथ जी ने बैठल।
0: अच्छा फोन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से वेलकम। और सब सब सब सभी साथी के अल्फाज नाम ले ले के हुआ है बताओ ब्रोर।
1: गंगा वक्त हम सब अपने से बताए अपन।
0: ओ हाँ ओ और मोई है अपन नाम बता रहे।
1: हम सोचिए पहला मनाए कि जो हम देवे उतनी देर बतियाई।
0: हम खौक कर सकीला भैया मोन।
2: हमरे यहाँ आप देखो का हुआ थे।
0: हाँ तनी से दिखा है।
2: नमस्कार हो भैया।
0: नमस्कार भैया मोन कैसे समाचार है? बहुत दिन बाद तुम्हारा आवाज सुन ली।
2: चलत है या हम वो भी तरसत है आपके आवाज सुने। कब सोची कोनो रोज बैल करब।
0: हाँ।
2: मार जब देखिला तब घाम निकसे है। तब बोली भैया शायद फिर निकल गए हुई है।
0: ओ तो
2: धनिया साथ तनी टाढ़े।
0: हाँ ओहो बात है। बाकी तो हमके जब बैल करी जब बरखा बरसी तब बैल करिए नाम है गंगा तो पानी होनी।
2: तो है।
0: और सब कुछ मोई भैया मोजी बोध
2: कौन सी बोलो
0: सब कुछ मोई।
2: हाँ जात है भैया।
0: अच्छा अच्छा
2: इस का बोले भैया राजन से बोली कि तनी बरखा बरखा बरसे बोले सुन तू ना मुई थी कर हम उधरे बाटी।
0: हाँ।
2: अब तो के लपक के ले लेबे
0: या या या
2: जब अच्छा झूरे झूरे आई गई ली।
0: हाँ।
2: मार अबे थोड़ा देर में चल जब आज देरी ना रही बे।
0: ओके अबे ओके
2: फिर चीता आई है सर नाम से।
0: ओ अच्छा अच्छा
2: एको हेल खुरो इसाई सबन रहा हुआ को देश में का नाम राजेश्वर राज ना ही कहाँ बता रही ली। अरे मोरियस निकल गया बतिया के समय आए मॉरिशस कही रहे हैं।
0: ओ अच्छा ओके।
2: हाँ एक देलवा आई गए है।
0: हाँ।
2: तो हम बोली तुलंग लेट हमारे आवत आवत कुल्ला पानी कर लिए।
0: हाँ।
2: तो इधर से कुकुही लेके जाएगा। और कन्हिया कुकुहिया बस्तैल कर ली तो हम अपन पेन को उदुए बोलाई गई ली।
0: ले।
2: तो हमार सब चीज हुए क्लॉप हो गए। अरे फंस गए मार तबो दोनी पान डबल लहा हम रुकवा देली। हम बोली एक कॉम फोर हाल बोले अलशैनी कॉम दाम फॉर को बैग। तब वही घरवा हम बोली आप लोग लेटो हमारे आवत आवत तो कुल्ला पानी कर लीजिए।
0: या या या या
2: या और समाचार सब ठीक है भैया?
0: बस चले भैया धीरे धीरे के गुजार।
2: अच्छा अच्छा अच्छा भैया प्रातः कैसे और भैया लोग यहाँ है
0: तुम के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: या
0: डंके
1: भैया पाँच छह जने हैली।
0: हाँ।
1: और भैया आनंद घेरा तो ही बैठा थी शायद वो कुछ मांगा थे बोले।
3: गंगा नमस्कार
0: भैया।

0: बहुत सक्सेस तुम लोग के बोली ला। और
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया आनंद,
0: राजेंद्र सर्कल में यहाँ बैठक रहे
1: हैं, तो
0: हम लोगों के थोड़ा अंडरस्टैंड करी और हम सोचिला और जनता जन सुनत हुई उस सब अभी आई जाए एल का दौंद लाख के राजेंद्र द्वारका से कॉन्टैक्ट करियो।
1: हाँ हाँ,
0: और तब बड़ा अच्छा रहे
1: ना आवल जाए जरूर। दो बाकी है तूफान लखम दौंदर दाख के स्टूडियो में रहिला, बाकी यहू तो भी एक भेंट है ना तार द्वारा। हाँ। भेंट जाए, सबसे भेंट जाए है और लाइफ एक्सटेंडिंग में आए भी,
0: या
1: बहुत अच्छी बात है।
0: इस खुद भाई गंगा,
1: अच्छा भाई आनंद,
0: थैंक यू वेल,
1: ओके थैंक यू वेल
2: गंगा। भैया रोबी अशरफ यहाँ बैठे अभी।
1: हाँ, अरे
2: हसनू रोबी हसनू और भैया फिदेल कास्ट्रो।
1: ओके अच्छा, दोनों के फाउंड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक माल जाते कांडे लेट देन यू इनफॉरमेशन मिले गंगा अन सेशन ट्विन तक साथ आ रहा सेशन ट्विन सितंबर के कोर्ट में बहुत साथ लॉस दिस इज अन ये जो न ये है क्रॉन्कल द क्रॉन्कल जहाँ पर हम बैठे ला वो इन अ वे कोर्ट में बॉस में गिरे है आएगी तो देखे जहाँ हुए पर पछुआ रही फन तुआलुक और वहाँ लोग बैठे हम लोग कार्ड खेले और बोली बात हुई।
1: अच्छा, कुछ ना कुछ तो चाहिए होवे के ना,
2: पीटर ड्रिंक रही और एगो और मीड डीलिंग रहा
1: बोल
2: 2020 अक्टूबर के सर्कल के एडीआरक बस्ता है एक लेक और इधर हमार या तो तू जाने रे फादर दा फिर कर ली मैं तो फॉलो साल मार हम मंगल अपसी 2020 के मंगल एक लेक एगो छोटा के खाना पीना रही मैं हाफी एंड रंग के एक अब दू जन साइज यहाँ के वही अकाउंट वो आए जो यहाँ को एक अकाउंट आई कुछ बोले
1: या ना तो मोई तो
2: साइज आओवी के बारे में राम राम भारत की कुछ आई बोले वन
1: हाँ वो हो जाए कुछ कुछ
2: आन का फाल है तो उधर पार्लियामेंट से
1: या
2: तो ही आई बतायो का बारे मार अन्य एक वाले थीले माल इंप्लेन हो रहे थे लोग यहाँ पर आवे 10 जने 12 जने तो सब एक जने का और लेकर आए सके तो सिते वो मैं फेक में से यही छुटका हमें भी बड़कों रहें तो हमने मार वो खान खोने निकले ने रहें तो सिते
1: क्लेन रोइम तो और मोई है बड़कना रोइम तो मैं इन लूप रहे दूसर दूसर कोई के
2: या और अन दखाव फान तो आल अफ्तर फीर इर बातचीत हुई करता हो
1: सही कर वही थे सही कर
2: वही फिर जैसे हम लीफ हम मीड दिल्ली के
1: और अन
2: पैदर सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और
1: आपको भी बहुत बहुत
2: गंगा
1: भैया राजन ऐसे ही रही है सबके एक बार फिर बहुत तू लोग सुने प्रोग्राम में हुआ तुफालक ओ अच्छा तुफालक मेरे को नंबर डाल नहीं सबको ही खतीन सर्कल के सबको ही खतीन
2: अच्छा
1: एस खुदान। तो जो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं सर्कल के चलिए हमने रखे थे चलो चला देते इस तरह से सभी सुनने वालों श्रोताओं के लिए और साथ ही साथ सर्कल के सभी मेम्बर के लिए।

फिल्म हंसते जख्म में हम आपको सुनाए हैं रफी साहब और लता जी की आवाज में मदन मोहन के साज पर। लीजिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है सूत्रमेर, सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी। मीला जी और जनाब मंसूर के लिए शुभकामना के साथ, मीला जी और भैया मंसूर जी आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये गीत आप लोगों के लिए चलाते हैं।

कितना प्यारा वादा है रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में पेश हुआ ये शानदार गीत फिल्म कारवां में से निकाल कर। और ये गीत हमने चलाए हैं सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए और जनाब मंसूर के लिए, दोनों के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ शाम पेश करते हुए मीला जी और भैया मंसूर के लिए। चलिए देखते हैं अगला गीत हमने प्लेयर में क्या रखे हैं। वाह क्या बात है, चलो ये गीत सुनते हैं इस तरह से।

वो है ज़रा खफा खफा, ये गीत पेश हुआ हमने पेश की इस तरह से। ये शानदार दीवत फिल्म शागिर्द में से निकाल कर चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो ये है। जी हाँ, ये भी फिल्म कारवां की है।

ये भी रफ़ी साहेब आशा जी कारवां में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। कार्यक्रम आप पेश है तो लीजिए इस तरह से।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें। ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म स्वयंवर में से निकाल कर हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। आशा जी है फिल्म हमसाया ओपी नैयर के साथ।

एक हिंदी में गा रही है और एक तमिल में बोल रहा है, तो मुश्किल तो अवश्य पैदा होगा। आपने सुने ये शानदार गीत हमने पेश की।

0: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।
1: सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आप सुना रहे थे कार्यक्रम में ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, आपने किशोर कुमार जी के वर्जन यानी किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये गीत बहुत बार सुने हैं। चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं लता जी की आवाज़ में जो हम कम चलता है। तो लीजिए लता जी, फिल्म महबूबा में से।

इस गली में तेरा घर न हो बालमा, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियन साहब को सुनाए हैं आर डी बर्मन के साज पर हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो भी एक धमाकेदार गीत है।

ये भी कारवां में से निकाले हैं। आरती बर्मन के साज पर आशा जी आपको सुनाएं। चलो ये सुनते हैं लता जी।

जोगी ओ जोगी प्यार में क्या होगी, ये गीत आपको सुनाया गया। फिल्म है लाखों में एक और लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये क्या ख्याल है।

0: एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में पेश हुआ फिल्म गैम्बलर में से निकाल कर निकली सैफ तक का ये गीत एस दे बर्मन के साज पर हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। फिल्म कर्ज
1: लैला मजनू शिरी और फरहा इनका सच्चा इश्क जमाने को अब

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

एवरग्रीन किशोर कुमार और साथ ही निकाले हैं फिल्म कर्ज में से। आप जरूर फिल्म देखे होंगे कर्ज, और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की।

तुम हो ये गीत हम आपको सुनाए हैं फोवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए बहुत दिन हुए ये गीत हमने नहीं चलाए हैं। ये गीत दरअसल में रात्रि को चलाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, इसलिए हमने सोचा इसे चला दूँ, कब मौका मिले या ना मिले। सुन लीजिए हेमंत कुमार का ये गीत, बहुत दिन हुए हम भी नहीं सुने हैं।

हेमंत कुमार जी का ये गीत हम आपको सुनाए बहुत दिन बाद। निकतिन देखूँ तो निकतिन सेशन 5 तक 1956 का ये गीत हम आपको सुनाए हैं। बीच कुछ हमने सोचे चलो इसे भी रख दूँ।

मेरा दिल भी कितना पागल है, ये गीत आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू आपको सुना रहे हैं। घड़ी पे देखूं तो करीबन 5 मिनट बाकी है 3 बजने में। यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की, इस उम्मीद है लोग को पसंद आया होगा। मैं खास करके सूत्रमेल के रहने वाली मीला जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो कार्यक्रम में भाग ली, और जनाब मंजूर को भी, दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बाद आप सुनोगे विज्ञापन और न्यूज़, और हमारे जितने साथी हैं मिलके आपके सेवा में रहेंगे। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला सोमवार को यानी रविवार को गीत गजल के कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक शुभ शाम।

होता सुन लो, आप लोगों ने तो खुद सुना है हमारे दोस्तों, और कहते हैं कि तेरी ख्याल से खुद को छुपा के देखा है हमारी, हमारी बात सुनो दोस्तों, कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा कर देखा है, दिल को नजर को रुला कर देखा है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं तेरी कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम, मैंने कुछ कुछ पल तुझे भुला कर देखा है। और कहते हैं इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून, तुम रखो कदम जहां खुदा में, तुम रखो कदम जहां खुदा करे मैं वही जमीन बन जाऊं। तो हम जाते हैं दोस्तों, और एक प्यार भरी गीत, तुम्हारी नजरों में हमने देखा है, कल की आवाज नेहन जिन ट्विंस का ये फिल्म है, और रोहित बच्चिया और प्रतिभा सिन्हा का ये गीत है, आओ मिलकर सुना जाए।

0: झलक रही है।
1: तुम्हारी नजरों में हमने देखा और प्यार में तो एक से एक चीज झलकती है दोस्तों। कभी दांत झलक देते हैं तो कभी आंख में से आंसू गिर जाते हैं। प्यार में बहुत चीज झलक देते हैं कि कहते हैं हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बार पर ऐतबार कर लेंगे, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, हम जिंदगी भर आपका इंतजार कर लेंगे। दोस्तों प्यार में ये सब तो होता ही रहता है ना, कि कहते हैं नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम की मैं इश्क के जहर का आधी हो जाऊं। तो हम जाते हैं, वो लड़की बहुत याद आती है, फिल्म का नाम है कयामत, अलका जी और कुमार शानू सोनू निगम, जिसमें काम किया है अजन देवगन।

और ये लड़की बहुत याद आता है, और न सिर्फ लड़की याद आता है दोस्तों, लड़की को लड़का भी बहुत याद आता है, और लड़की को जो लड़का याद आता है तो क्या कहते हैं, लड़का कहते ही कि तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, और उस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। दैट वाज अनचोपन से प्यार करने वालों के लिए, लेकिन असली बात यह है, हमने सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हमें सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हम सिर्फ तुम्हारे हो जाए, हमें इतना मजबूर कर दो। तो ये प्यार भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी गीत हम आपके लिए चलाते हैं, और नेखंत इंद्रियन से इवेंट की ओर हम जाते हैं। फिल्म के नाम है ब्लैकमेल किशोर जी, और क्या कहते हैं कि हमारे दिल के पास आप हो, पल पल दिल के पास।

पल पल दिल के पास और तुम रहती हो, और दिल के पास तो रहना चाहिए हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे मोहब्बत भरी। और लोगों कि कहते हैं बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो, खुद को दुनिया के नजर से बचाया करो। सिर्फ आंखों में ख्याल ही काफी नहीं है, ख्याल में नींबू मिर्ची भी लगाया करो। और प्यार लोग जो प्यार करते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पर कुछ लेके आया है। और कहते हैं आई सनम काश मैं भी पानी की एक घूंट होता, आई सनम काश मैं भी पानी का एक घूंट होता, तेरी लबों से लगता तेरी रग रग में समा जाता, और तेरी चुनरिया उड़ जाते तो हमें कैसा लगता, आप खुद ही सुनिए।

और तेरी चुनरिया क्या हुआ भैया, उड़ गया है कि मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा है दोस्तों, मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा, पर लगता है ये तेरी जैसी होगी। मैंने चीखी है बहुत मिठाइयां, पर मुझे क्या पता था कि तेरी होंठों के लिपस्टिक उनसे भी मीठी होगी। तो जे कोई लिपस्टिक लगाए भैया ओके तो पता होगा कि चिजवा कैसे है। और कहते हैं किस्मत या मेरा इम्तिहान ले रही है, किस्मत ये मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है दोस्तों, पर क्यों बेवफा को वो इल्जाम दे रही है। और जब कोई बेवफा होता है दोस्तों तो ये गीत आपको सुनना चाहिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं निघति निघ्न निघन तक का ये गीत।

0: और चाहा है तुझको और चाहेंगे हरदम। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल फिल्म के नाम है मन नेहन तीन होंदत ए नेहन नेहन तक का दोस्मो। और कहते हैं किस्मत जा मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द से रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा को वही इल्जाम दे रही है। हमारे दोस्तों और प्यार भरी गीतों का और यहाँ पर हम चलाते हैं कि प्यार का महता एहसास दिलाने लगे हो तुम, अब तो मुझसे मुझे को चुराने लगे हो तुम, तेरी चाहतों का गया है जरूर इस कदर, हर पल हर जगह नजर आने लगा हो सिर्फ और तुम, कि अजनबी मुझे इतना बता प्यार तो होना ही था।
1: सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

अजनबी मुझसे मुझको इतना बता, और अजमी अजनबी आपको क्या बताएंगे। अजनबी जो है वो आंख में देख को प्यार हो जाता। दोस्तों आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगी, और इस फिल्म का नाम है दिस लव सॉन्ग, और ये है फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था, और अजय देवगन काजल ने इसमें काम किया है, उदित नारायण का गाया हुआ ये गीत है। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों की कहते हैं तेरे खामोश होंठों पर मोहब्बत गुनगुनाती है, तुम्हारी

उस लड़की पे दिल आ गया है दोस्तों, और कुमार शानू ने तिलगी लता जी और इस गीत को सुनाया है दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है, और अगला गीत से पहले दोस्तों हम जाते हैं रे कलाम की ओर। हमारे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत भरी रात है और मोहब्बत भरी रात में प्यार भरी गीत बहुत अच्छा लगता है। तो हम जाते हैं, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, आओ मिलकर सुना जाए, देखा तुझे तो हो गया दीवाना।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

मसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गाना, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म, जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था।
2: क्या
1: क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुराने गाने से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं, और हम उस देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, अगर आप मुकेश की सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में। क्या होता है इशारों इशारों में, तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रवि की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 55 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खतीर 55 का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानू राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है दोरो मस्त भरी पुरानी गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानू राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण, फिल्म का नाम है पतिता का। ये फिल्म है दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में। इस गाना को आओ सुनिए।

हेमंत जी के आवाज़ में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे, और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरे को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहते कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं फिल्म में है राही बदल गई है। इसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की और आप उम्मीद है सुने होंगे और अवश्य अच्छा लगा होगा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और मैथिली मुकेश, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और देखते हैं किशोर कुमार जी साथ हैं।

इनकी बदौलत कितने लोगों से पहले मरते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जरा सोचो सोचो जरा समझो सब।

दो जासूस करें महसूस, रफ़ी साहब और माइती मुकेश मिल के ये गीत गाए हैं। आपको पता है रफ़ी साहब मुकेश जी बहुत गाने नहीं गाए हैं, कुल मिलाकर जहाँ तक जोड़ा गया है, मिले हैं लोग को, मुझे भी मिला है, तो द्रियंत में तक गाने हैं, उसमें से ये एक था। टोटल मिलकर यानी कुल मिलाकर द्रियंत में तक गाने रफ़ी साहब और मुकेश जी साथ मिलकर गाए हैं, और उन द्रियंत में तक में से यानी 23 में से ये एक था। दो जासूस करे महसूस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देखते हैं हाँ माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, ये गीत लेकर।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला मुकेश जी आपको सुनाई है मेरे प्यार में क्या वफा न थी। क्या बात है, ये गीत सुनकर रफ़ी साहब ने कहा अगर प्यार की बात है, वफा की बात है और बेवफा की बात है तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं कि जवानी और दीवानी की बात कर रहा है। लीजिए रफ़ी साहब की आवाज़ में ये जवानी दीवानी की बात। जवान तुम हो, जवान हम हैं।

शंकर जय किशन के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ जवान तुम हो जवान हम हैं, फिल्म दुनिया में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करते हैं और ये है, इसे चून अभी नहीं किए थे क्योंकि मुझे भी नहीं पता गीत कौन सा है। चलो मिलकर सुनते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ।

ये कश्मीर है, ये कश्मीर है गीत के शब्दों से यही पता चलता है कि इसकी शूटिंग अवश्य हुई होगी कश्मीर में। बर्फीली यादों, बर्फीली पहाड़ों, गर्मी भी हो सकता है, पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाएं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कहा, बर्फीली पहाड़ों में कश्मीर के ये शूट किया हुआ होगा। बहरहाल चलो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं ये गीत, क्या ख्याल है।

कि हम आधा आधा लता जी और अपन की किशोर कुमार फिल्म आज़ाद में से निकाले हैं और हमने पेश की बस सिर्फ आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये रफ़ी साहब की, ये रफ़ी साहब का ये गीत है जिसमें लता जी भी साथ दी है और फिल्म है हंसते जख्म। इस तरह से

फिर हम हंस दिल जख्म में से निकाले हैं लता जी और रफी साहब की आवाज़ में ये पेश किया गया, बस आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं और वो ये है, इस तरह से ये दुएत है उन्हीं कौमी के साँच पर।

रफ़ी साहब आशा जी, ये हाँ दिल ने फिर याद का किया निकतीन सहन सस्ते खा, ये फिल्म सोनी कोमी के साज पर हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। क्या ख्याल है कर जमाया आपको ये सुनाऊँ, वाह क्या बात है।

सुंदर भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, आ जा रे आ जा शर्म। आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, बहुत दिनों बाद शायद आप ये गीत सुनोगे, इस तरह से आ रहा है।

एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग इस तरह से।

0: चला जाऊंगा दो अश्क बहा लूं, तो चलो रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, धमाकादार गीत है। जी हाँ, चलो सुनते हैं क्या इसका नाम है, क्योंकि नाम बताने में झिझकता है।
1: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
2: जी मेरा असली नाम जॉनी।
1: और नकली?
2: नकली भी जॉनी।
1: इसके अलावा भी कोई नाम है?
2: जी हाँ, जानी। आपको ज्यादा पसंद है?

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप इस समय फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे चून हैं और आज का विषय, उसके बारे में थोड़ा से मैं रख देता हूँ कि साल 2023 में 150 साल हुए हमारे पुरखों जो भारत छोड़ करके हमें और जाकर के सूरीनाम देश में अपना कंतरा काटे और वहाँ से आज हम सब उसकी बीच है हम सब और यहाँ हॉलैंड में भी आकर के रह रहे हैं। क्या हम उसके बारे में कभी चिंतन किए कि हमारा पर आजा, हमारा वृत आजा, हमारा वृत आजी कौन थे? तो इस अंतर्गत में कुछ मटेरियल भारत से भी और हम सब इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे अभी। और ख़ास करके मैं आपसे गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि अपना गांव जहाँ से हमारे पर पर पर दादा जो भारत को छोड़ कर के गए थे, वहाँ से और पंडित सूरज राज जी जो हम सब के साथ और अभी आगे कार्यक्रम में उसे टेलीफोन द्वारा और सम्मिलित करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी जो भारत से लेकर के और मूर्ति जो सूरीनाम देश में गए हैं वहाँ पर स्थापित किए हैं, इन बातों के हम सब अभी आगे में सुनेंगे। ये ख्याल रखना कि कुछ मटेरियल जो भारत में बनाया गया है उसे भी कोशिश करेंगे और अभी आपके लिए रखने के लिए। तो दोस्तों, पहले हम उस गीत की ओर बढ़ेंगे, तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।

0: तो ये है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और ये कार्यक्रम जो हमारे पुरखों जो 150 साल पहले सूरीनाम देश को और प्रवेश किए हैं, जो भारत देश को छोड़ करके सूरीनाम देश को गए हैं और वहाँ जा करके हमारे जो परिवार वहाँ शुरू हुआ सूरीनाम में, जिसका और बीच हम सब है आज इस कार्यक्रम में, उसके बारे में कुछ संदेश रखा जाएगा। ऐसा हुआ कि हम सब तैयार होकर और भारत देश पहुँचे और अपना परिवार के खोज में, तो परिवार की खोज खोजते खोजते और बहुत जो मेहनत से वो स्थान को प्राप्त किए जहाँ से हमारे पुरखों हमारे पर दादा अख्तिन ससन नई खंतक में, उस समय जब बोट अबे जहाज जो होते थे लकड़ी का और बनाया जाता था, जिसे हम सैल बोट जो हवा के माध्यम से और कुछ 3 महीना तक समुद्र के लहरों द्वारा भारत को छोड़ करके सूरीनाम को पहुँचे, इन फीरन तख्त दाख जो रईस दूर हुए थे, तो वहाँ जा कर के पहुँचे और वहाँ अपना कंत्राक जो होते थे उसको काट करके और अपना फिर परिवार घर गृहस्थी बढ़ाए। तो हम भारत देश में पहुँचे और पहुँचे कहाँ पर, एक स्थान है जिसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है गोंडा, और गोंडा में गोंडा भी ठीक से और देखा जाए कि गोंडा एक डिस्ट्रिक्ट है और एक दौरप का नाम है भी, और दौरप में भी जो बड़े दौरप होते हैं उसमें भी छोटे छोटे और अपना इलाकाएँ होते हैं। तो एक होता है करगोपुर, और करगोपुर में हम लोग प्रवेश किए और वहाँ जबकि जा करके खोजा गया तो और मिला एक पंडित जी, और उसके साथ हम कार्यक्रम में पंडित सूरज जी के साथ कार्यक्रम में आगे हम प्रवेश करेंगे।
1: देखिए जब आप पढ़े लिखे तो आपको ये तो क्लियर होगा कि ब्रह्म से
2: हम लोग
1: और शक्ति से
2: जी
1: हम लोग का प्रादुर्भाव हुआ।
2: सही बात।
1: सप्तऋषि आए,
2: सप्तऋषि
1: सनक सनंदन सनत को जो आए चार, और उसके बाद पांचवे नारद आए।
2: हाँ जी,
1: पांचवे नारद आए।
2: हाँ जी,
1: जो है तो 7 और 5 12 लोग हो गए।
2: हो गया 12।
1: 12 से हम लोगों का शुरू हुआ पूरे सृष्टि का निर्माण
2: शुरू।
1: मनु सतरूपा आई इनके द्वारा।
2: हाँ जी,
1: बना सब ठीक है
2: जी।
1: अब जब हमारा गोत्र ब्रह्म है
2: जी,
1: हमारा गोत्र ब्रह्म है, फिर हम इधर उधर भटकने की जरूरत क्या?
2: जरूरत
1: हमारा गोत्र अच्युत है। अच्युत गोत्र यानी भगवान विष्णु का गोत्र होता है।
2: हाँ जी,
1: तो भगवान विष्णु का गोत्र अच्युत है, तो आप ये गोत्र लेकर के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि निज गोत्र मेरा ब्रह्म है। जो हमारा गोत्र है वो ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कोई गोत्र नहीं है।
2: सही बात।
1: सप्तऋषि भी तो ब्रह्म गोत्र से उत्पन्न हुए।
2: एकदम बिल्कुल।
1: तो जब ब्रह्म गोत्र से उत्पन्न हुए हैं ठीक है, तो फिर जो है अब हमें ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं।
2: बिल्कुल ना, पर माथा पच्ची नहीं करेंगे तो कैसे आपके साथ यहाँ बैठे।
1: हाँ ये सही
2: तो
1: है।
2: बोले प्यासा को आप समझ गए। तो मैं इसलिए आपका अप नंबर हो गया ना।
1: चलिए,
2: और जो इस समय हम लोग यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहे हैं ये नहीं होता भी।
1: जी जी सही है।
2: समझ गया।
1: देखिए ईश्वर की कृपा थी, मुलाकात ये, हो गई।
2: ये जो होना है वो होना है, और ये बड़ा ये तो मुझे, अरे यही तो मुझे देखना था।
1: दर्शन करवाते हैं। देखिए सबसे पुराना मंदिर है।
2: हाँ जी,
1: ये उदासीन आचार्य है, उदासीन आचार्य श्री चंद्र भगवान नानक जी के लड़के।
2: हाँ जी,
1: तो नानक जी का ये मंदिर है
2: जी,
1: शिव जी का मंदिर है।
2: ये तो जो सोचा भी नहीं था।
1: हाँ,
2: ये है मंदिर पुराना।
0: सुनने वाले जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, तो ये आवाज जो एक वहाँ करगोपुर में हम सब पहुँचे पुलिस खाना के पास और जो प्रश्न किए तो वहाँ ये पंडित जी को हम सबको मिला दिया गया। और पंडित सूरज जी जो अपना मोटरसाइकिल पे आए थे और हमने वहाँ का वातावरण हमने वहाँ का और पहुँचते हुए वो जो अपनापन होता है वो महसूस किया और मोटरसाइकिल पे पंडित जी के साथ बैठ गए। और जैसे कि मोटरसाइकिल खींच रहे हैं आगे के ओर तो सड़क पे देखने को मिलता है पत्थर का सड़क था, पर पत्थर का सड़क पर आप ऐसा महसूस कीजिए कि पत्थर का सड़क पर फूलों का और गुलदस्ता बनाया गया था। सुनने वालों, और मोटरसाइकिल पे बैठे चल रहे हैं, आगे में देखते हैं कि एक महिला जो सड़क के किनारे खड़ा हो करके और लोटा जो कहते हैं पात्र में जल सूर्य देव को अर्पित करते हैं, और आगे में गाय का तबेला दिखाई देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक व्यक्ति जो जैसे सूरीनाम में हम सब गर्मी में और धान काटते थे वहाँ एक धान काट रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अपना ही गांव में जो महसूस होता है कि केन का झाड़ा यानी कि यहाँ पर केन ढेर सारे हैं। और आगे मोटरसाइकिल पे बढ़ते हैं और फिर जहाँ कुछ झुंड के साथ लड़के बैठे हुए अपने बातचीत कर रहे हैं और थोड़ी दूरी पे वहाँ जो जैसे कि गांव के सबसे पुराना मंदिर और उसका दर्शन हुआ। तो अभी इस बात के बारे में और भी चर्चा होगा, पहले हम मंदिर का दर्शन करते हैं।
2: जय हनुमान बाबा, क्योंकि पुलिस वाला ने भी कहा कि भगवान तो आप ही है, ऐसे ही कहा ना। जय हो। देखो यहाँ ये मंदिर का नाम शुभ नाम का
3: जय हो प्रभु। पहले माथा तो टेक ले।
2: आय हो माथा टेक ले। जय हो प्रभु।
1: सर झुका के
2: ओ लगत तो टपता चला।
1: आइए दर्शन कर लीजिए हनुमान जी महाराज का।
2: हाँ हनुमान बाबा, फोटो वो बना लेते हैं।
1: आइए फोटो खिंचवाते हैं।
2: हनुमान बाबा, हम लोग ना आ गए बहुत दूर से। जय हो।

0: ये हनुमान जी महाराज है, सबसे पुरानी मूर्ति है।
1: बहुत पुराना मंदिर भी जैसे आपने कहा,
0: बहुत पुराना मंदिर है। हाँ। ये जो है भगवान श्री चंद्र नानक पंथ का ये मंदिर है। हनुमान जी महाराज सीताराम परिवार से इत्यादि विराजमान है। आगे चलिए आपको शिव जी के मंदिर दिखाता हूँ जहाँ पंथ। हाँ एक मिनट साथ में हो जाए, फोटो हो जाए।
1: सुने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और ये कार्यक्रम में जो रखा जा रहा है कुछ बेल्द जो टेलीफोन द्वारा वहाँ पर बनाया गया, उसे हम सब भी इस कार्यक्रम में रख देते हैं ताकि आपको वो महसूस हो सके कि ये वहाँ पर का वातावरण कैसे हो गया था और अपना परिवार के खोज में जो हमारे साथ और भी लोग थे और जा कर के कितना खुशियाँ महसूस कर रहे थे। हम सब कुछ बेल्द मटेरियल है, शायद बेल्ट मटेरियल देख करके आप और भी समझ पाते, पर वो तो रेडियो द्वारा नहीं रखा जा सकता है। पर कुछ कोशिश है कि हम अपना और संदेश आपके साथ बांट सके। जो हम सब अभी हनुमान जी का मंदिर में दर्शन दिए, एक ऐसा मंदिर, एक पुराना मंदिर जो भारत के और करगोपुर में, जिसमें और प्रवेश करते ही मन एकदम पुलकित हो जाता है। तो हम पंडित सूरज जी से अभी और भी संदेश सुनेंगे। ये है मंदिर गांव में करगोपुर, और हम लोग ने यहाँ पहुँच गए हैं। ये जय शिव शंकर भवानी।

0: सुनने वालों, जैसे कि हम सब मंदिर का दर्शन किए, हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर जो वहाँ है, और उसके बाद में मंदिर से बाहर निकलते तो एक बड़ा सा वृक्ष था, और बड़ा सा वृक्ष के बगले में एक तालाब, तालाब वाटर फाइफर जो वहाँ पर बनाया गया है, कितना सुंदर रूप से जो और है, और उसके पाछे में एक समाधि। तो समाधि का मतलब क्या है, इसे तो हम सुन करके और चकित हो गए, पर वो समाधि के बारे में बताया गया, और उसके बारे में तो एक अलग सा कार्यक्रम हम रखने वाले हैं और ज्योति का प्रकाश के अंतर्गत। पर समाधि वहाँ पर एक संत का वहाँ एक समाधि बनाया गया है, और उसे देख करके भी दैट इज ओकन हेल बिसोंदर है दैट कंसीन एंड दैट बस्तात इन इंडिया, ऐसा ऐसन चीजों जो हम और भी शायद तीर्थ स्थानों पे नहीं देखेंगे, ये सुंदर सा और स्थान से देखे। तो सुनने वालों, आगे का कार्यक्रम में हम सब बढ़ रहे हैं, और वहाँ जो मंदिर के पास एक छोटा सा शहर है जिसे तौन सिटी कहते हैं वो लोग, जो बखेन यार नई खतिन होंदत में जो अभी ब्रिटेन का राज चल रहा था वहाँ, और उसे तौन सिटी बनाया गया एक छोटा सा गांव में। और ऐसा समझिए कि एक रास्ता जो पत्थर का है, और छोटे छोटे दुकानें बगल बगल करीब करीब में है, और सब एक दूसरे के वहाँ पहचानते हैं, क्योंकि मैं पंडित जी के साथ वहाँ और प्रवेश लिए है। मंदिर के बस कुछ मलिटों यानी कि 2-3 मलिट का रास्ता था।
1: ये गांव है हम लोग,
2: ये खरगुपुर है,
1: खरगुपुर गांव,
2: खरगुपुर नगर पंचायत,
1: नगर पंचायत। और ये हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे हैं मार्केट,
2: नहीं अभी मार्केट तो उधर जाए,
1: वो उस तरफ है,
2: टाइम में है, गुरु जी गए मार्केट में, हम जब तक जो घूम आएंगे तब तक जो है जो वो भी आ जाएंगे, गुरु जी आएंगे तो उनसे भी हो जाएगी आपकी मुलाकात।
1: अच्छा
2: आइए चलते
3: हैं।
1: समाधि
3: सेतल वर्ति नाम लग बखरा था पधेन वाद नहीं हकरी में तो मलित वर्ति के मार्ग के पास होगा समा का देना मिशल ट्रांसलेट
2: जी जी जी जी
1: ये राजेंद्र जी बहुत चलाक आदमी है, ये ट्रांसलेशन में बहुत बढ़िया। पंडित जी कौन सा पूजा होता है
2: यहाँ? बाबा श्री चंद्र का पूजा होता है, और यहाँ पे भगवान शिव जी, भगवान हनुमान जी महाराज, सीताराम परिवार, ये सब जो है विद्यमान है इस मंदिर पे। ये उदासीन संप्रदाय का मंदिर है, राम जानकी मंदिर उदासीन आश्रम खरगुपुर के नाम से विख्यात है। इसमें जो भी लोग अपनी मनोकामनाओं को मान करके यहाँ आते हैं और उनके कार्य जो है पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनके भगवान श्री चंद्र उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मान्यता है। और हम सभी, हमारा बड़ा भाग्य है कि हम जो है मंदिर के सेवादार के रूप में बाबा श्याम सुंदर दास तूफानी बाबा जी जो हमारे गुरु जी हैं उनके सानिध्य में हम सही मंदिर पे रहते हैं। आप लोग आए हैं इतने दूर से, आए कहाँ से आए हैं आप?
1: हॉलैंड,
2: हॉलैंड जर्मन के पास,
1: जर्मन के बगल बिल्कुल करीब है।
2: तो आपकी जिज्ञासा यहाँ आने की कैसे?
1: जिज्ञासा ये हुआ कि कितने बार देखा कि लोग अपना खोज किए
2: जी,
1: मुझे भारत से कुछ 2001 से संबंध है, और मन में ये उठा
2: वही जो है हॉलैंड जहाँ रहते हैं वही,
1: हाँ
2: तो वहाँ करते हैं,
1: तो वहाँ पर ये एक से हुआ दो, यानी कि ऐसे आगे बढ़ता गया।
2: ये मार्केट यहाँ से प्रारंभ होता है,
1: वो मार्केट तो आपने कहा था 10 मिनट का, ये तो 2 मिनट
2: अब स्टार्ट हो गए।
1: हाँ, ये तो मार्केट है,
2: ये हमारा मार्केट है, और यहाँ पर जो है छोटा सा एक कस्बा है, और यहाँ से आगे 2-3 मीटर जाएंगे बाबा श्रीनाथ का मंदिर।
1: अच्छा,
2: जो कि बहुत ही भव्य है, दिव्य है, एशिया का नंबर एक शिवलिंग है, सबसे ऊंचा शिवलिंग है।
1: अच्छा,
2: अगर आप उसके दर्शन जो है करना चाहें तो अभी बाहर से है रास्ता, वहाँ से चलते हैं, वहाँ पे दर्शन
1: यहाँ टुक ले लेते
2: हैं। नहीं वो तो है ना, आपके पास से वही गाड़ी, इसको बढ़िया हाईवे रोड बना है।
1: हाँ।
2: अब योगी जी के शासन में जान लीजिए यहाँ का बहुत बढ़िया विकास हो गया। योगी जी ने अयोध्या में जिस तरीके से महोत्सव मनाया है, अब जान लीजिए पूरा जनता जागरूक हो गई
1: जी,
2: आज लोग अपने धर्म को पहचान रहे हैं, सनातन धर्म क्या है इसके बारे में लोग जान रहे हैं, आज बच्चा बच्चा जो है अपने धर्म को पूर्ण रूप से जान रहा है। तो ये बहुत बड़ा अलग जगह है आदरणीय योगी जी के।
1: खरगोपुर बाजार है ये सुंदर से।
0: दोस्तों जैसे कि अभी आपने ये कार्यक्रम में सुन रहे हैं कि कुछ मटेरियल जो हम सब टेलीफोन द्वारा वहाँ से और बनाए थे और इसी कार्यक्रम में रख रहे हैं ताकि आपको ये महसूस हो पाए और वहाँ का वातावरण किस प्रकार से है। दोस्तों ये हुआ कि हम सब वहाँ पर पंडित जी के माध्यम से हम सब वहाँ पहुँचे जो उस शहर का सबसे अवस्था वाला व्यक्ति था। वो बाबा जी कुछ 100 साल का था और उसके पास हम सब जा कर के पहुँचे और वहाँ ये प्रश्न रखे कि आप हम जिस जिस नाम से जुड़े हुए हैं जिस नाम को चला रहे हैं उस नाम को कोई व्यक्ति को वहाँ पहचानते हैं या नहीं। और वहाँ इस बात को भी ये पता चला कि ऐसा हुआ जो 150 साल पहले के बात होते हैं सुनने वालों, तो उस समय से और आज तक भी काफ़ी और बदलाव भी आ गया है देश में। कोई कोई बिल्कुल पूरा परिवार वो और स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान से चले गए हैं और कोई कोई भी अभी तक वहाँ रह रहे हैं। और जैसे कि बाबा जी हम सबको और अपना संदेश सुनाए कि 5 पीढ़ी तक उन्होंने ऐसा दर्शन दिलाए कि कैसे एक ही व्यक्ति जो अपना जिस प्रकार से वो बाबा जी रह रहे इतना अवस्था का हो गए हैं और उनको इतना व्यक्ति को पता था। तो हम देखते हैं और कोशिश करते हैं ये जो मोबाइल द्वारा मटेरियल इकट्ठा गया है उसे रखने के लिए
2: बाजार में आप आए। हमारा भाग्य है कि आपको लेकर के हम मार्केट टहला रहे हैं। जो अलैया गट्टे की दुकान है, सब छोटे व्यापारी यहाँ पर जो अपना व्यवसाय
1: व्यापारी करते हैं।

0: कश्यप गोत्र से
1: काम चलता है,
2: कश्यप ने हम ज्यादातर इस बारे में जानते भी हैं।
3: अच्छा,
2: नहीं वो तो मिल जाता 1826 नहीं, ये आप 1192 की अगर खोज करें तो हम बता देंगे आपको।
3: अच्छा,
2: यदि आप 1192 की वाली बात पूछेंगे तब भी हम बता देंगे आपको खरगपुर में।
1: वही बात समझ गए,
0: वही बात मार्केट में हम बता रहे हैं। मार्केट में 1896 में हमारे पूर्वज रहे, 1896 के बाद में

0: 1904 में टाउन एरिया बनी।
1: मैंने आपसे बताया 1904 में ये टाउन एरिया बनी और देश आजादी के बाद से इलेक्शन होने लगा और उसके पहले बहुत सारे लोग आए गए।
2: कितना बदल गया,
1: बहुत बदल गया। अब देख जब आए होंगे पहले
0: आप लोग रिकॉर्ड नहीं,
2: ना ना
0: हम देखने से भी हम लोगों को मालूम हो जाता है कि आप लोग किस कास्ट से, आप लोग अपर कास्ट से।
1: चलिए आप अभी आपको जन्मभूमि मिले है
3: सीधे नाम राम का देश तो यहाँ से गई, लेकिन सर नाम से फिर हौलान आ गया यूरोप में और वहाँ से तो यहाँ आ गया, लेकिन भूमि यहाँ है कि यहाँ पर चलते तो आपको लगते हैं कि यहाँ के हो।
1: अब यहाँ से 18 किलोमीटर दूर भगवान लौकुश का क्षेत्र है जहाँ पे भगवान की गायें, ये गोंडा में गायें चरती थी और जो है राज्य उनका लौकुश का श्रावस्ती है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आइए आइए आइए, आपको बहुत बढ़िया लेटर, आप तो मीडिया से आ गए, आइए।
4: सुनो वालों, ऐसा हुआ वहाँ पर हम सब बैठ के बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और उसी समय पे वहाँ पर मीडिया वाला भी उपस्थित हो गए। मीडिया वाला भी अपने ओर से और जोर डाले और जाकर के फिल्म बनाई, यूट्यूब पे रखा गया है और उससे और खरगोपुर में जो एक गांव है वहाँ पर दिखाया गया। तो कार्यक्रम को आगे अभी हम सब कुछ और रखने वाले हैं। ये आप सुन रहे हैं जो मटेरियल जो टेलीफोन द्वारा बनाया गया था और वहाँ का हमारे अपनापन जो जैसे कि अभी आप महसूस कर रहे होंगे, तो हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे।
1: उनके पूर्वज
2: और जदुनाथ नहीं था भाई,
1: जदुनाथ कोई
2: या उनका बाप का बाप
1: जगुनाथ जगन्नाथ जगन्नाथ
2: वो जो
1: अब आप 18,000 किलोमीटर से दूर खाली यही पता कर रहे हैं।
5: हाँ, अपनी जन्मस्थली
6: जैसे साहब के संबंध
1: ये वहाँ इंगित है, इनके जो पास जो कागज है वो खरगोपुर ही दर्शा
2: और नहीं देता और उस टाइम पे नहीं था सब कुछ ना, कंप्यूटर था ही नहीं,
5: कंप्यूटर था नहीं।
2: तो वो जो जो बोल दिया तो लिख दिया।
1: अच्छा वो मोहल्ला
6: उनका भाई जगदम्बा रहे। तो वो सब मर मराए गए सब।
1: उनके पूर्वज
2: और जदुनाथ नहीं था भाई,
1: जदुनाथ कोई
2: या उनका बाप का बाप
1: जगुनाथ जगन्नाथ जगन्नाथ
2: की वो जो 1896 में गया तो लिखवाया था 26 साल का, पर वो कॉन्फिडेंट नहीं कि 26 साल का यही खड़गोपुर।
1: अब आप 18,000 किलोमीटर से दूर खाली यही पता कर रहे हैं।
5: हाँ, अपनी जन्मस्थली
6: जैसे साहब के संबंध
1: ये वहाँ इंगित है, इनके जो पास जो कागज है वो खरगोपुर ही दर्शा
2: और नहीं देता और उस टाइम पे नहीं था सब कुछ ना, कंप्यूटर था ही नहीं, तो वो जो जो बोल दिया तो लिख दिया। दादाजी कैसे चार भाई थे?
5: जगतमणि
6: जगतमणि
5: चार भाई थे,
6: ब्राह्मण
7: जगतमणि थे ठाकुर और
6: विश्वनाथ
7: संसारी,
2: ऐसे
7: ये चार भाई थे और बाकी ठठेर में
2: 1904 में ये दूसरा सिटी बना।
1: 1904 में
5: सब पूरा पूरा सब गायब होगा।
1: अब इससे पहले घर द्वारिया होता रहा।
6: जय देखो हम बताई, पहले अंग्रेज जब आवा है 1857 में यहाँ अंग्रेज भारत पे यहाँ कब्जा की, 1860 में यहाँ बंदोबस्त अव्वल बनाई,
5: बंदोबस्त
6: अव्वल बना, तब वो पूरे जिला बनाई, बाजार के नक्शा बनाई, उसके बाद अव्वल के बाद फिर उमा बना है 72 में, नहीं पहले बना जब 72 नहीं गोमा बना 47 जो अब सब पटवारी उठवारी।
7: अच्छा अच्छा, हाँ
2: 47 में यानी 75 साल पहले के बाद।
6: और उसके बाद में 72 आखिरी में बना है, लेकिन वो आबादी के नहीं बना है, खाली खेत खरियान बाग बगीचे बना। अब आपके बहुत दिन तो होगा,
2: बहुत दिन
7: पांचवी पीढ़ी,
6: पांचवी पीढ़ी देर नहीं लगता। देखो लाला महादेव श्यामलाल राजकिशोर
5: और
6: कल्लू लड़का पांच पीढ़ी हमारे सामने होगी।
1: पांच पीढ़ी आपके सामने
6: बड़ी बात नहीं है। समय ज्यादा हो गया,
1: समय बहुत ज्यादा।
4: ये दादाजी जो भारत करगोपुर में सबसे अवस्था वाला आदमी व्यक्ति जो वहाँ पर हम सबको अपना संदेश सुनाए और जो संदेश को रखे कि कैसे पांच पीढ़ी उसके सामने जन्म लिया और फिर जाकर के आज भी वो और स्वस्थ हम सबको हम सब के साथ बात किए और जो रेडियो में कोशिश किया गया रखने को और शायद क्वालिटी जो हमारे और वॉइस का उतना बढ़िया नहीं होंगे पर संदेश जो दादाजी ने रखे तो संदेश से हम सबको और ज़रूर उस पर ध्यान देते हैं और ज़रूर इसके बारे में सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों जो भारत को छोड़ करके सूरीनाम आए थे क्या हम कहाँ से आए थे, हमारे बीच कहाँ से रखे हुए भारत जो हमारी मातृभूमि ही कहलाते हैं मातृभूमि है और क्या हम अपने जीवन में जो ये सुंदर सा शरीर जो ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है इसके लिए तो देवताओं भी तरसते हैं, क्या हम उसके कभी खोज किए हैं। इस साल हम सब जो इसी प्रकार के कार्यक्रम में और यानी कि तेईमा जो एमिग्रासी नार सूरीनाम इसी अंतर्गत में और भी कार्यक्रम बनाया जाएगा, आप के ओर से जब इसमें आप सहयोग देना चाहते हैं आप कोई के और किस प्रकार से आपके अवस्था वाला आपके नानी नाना आजी आजा अभी जीवित है और वो वॉइस आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हो तो ज़रूर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो में मालूमात कीजिए और मांग कीजिए संजय को और संजय जो कोशिश करेंगे, मैं ज़रूर इस बात को कोशिश करेंगे कि ये वो वॉइस जो आर्काइव में रखा जाएगा और ये हम अपना यानी कि उनस एक आइडेंटिटी को और हम जान सकेंगे। तो दोस्तों हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे न्यूज और कमर्शियल के बाद हम सब फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।
8: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
9: Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
8: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
10: हर काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247। मेरी इन्फो वी www.radiovahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: मन का मोर चला अपना गांव संभालो, मैं तो शहर की ओर चला अपना गांव संभालो, मैं तो शहर की ओर।
1: सुनने वालों, जैसे कि हमने कार्यक्रम बना रहे हैं और कार्यक्रम जो हमारा गांव से जुड़ा हुआ है, भारत भारत में एक, जैसे कि अभी आप सुन भी लिए हैं कि ये हमारा जो जहां से हमारे पुरखों जो आज से 150 साल पहले छोड़ कर के सूरीनाम को गए थे और वहाँ का त्योहारों कैसे मनाया जाता है, तो हम इस समय लाइन पे आ रहे हैं हमारे श्री पंडित सूरज देवराज जी से, और जो हम सबको वहाँ पर का वातावरण वहाँ के और संदेश वहाँ से और हम सब के सारा वृतांत जो सुनाए हैं, तो हम पंडित सूरज देव राज जी को और लाइन पे ला रहे हैं, और ताकि हम सबको जो वहाँ अभी तक जो अपना गांव है वहाँ का वातावरण, वहाँ कैसे वो त्यौहार, जैसे होली हम सब यहाँ मनाते हैं, जैसे दिवाली हम सब यहाँ मनाते हैं हॉलैंड में, सूरीनाम देश में जो हमारे पुरखों लेकर गए थे वहाँ से हम सब यहाँ आकर के मना रहे हैं। तो हम इस समय लाइन पे आ गया, मैं देख रहा हूँ कि सूरज पंडित सूरज देवराज जी, और पंडित सूरज जी आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ रहे इस कार्यक्रम में। तो सूरज जी, भला ये बताइए कि जो हमारे पुरखों लेकर गए हैं और अभी तो हम सब उसी तरह से और चला रहे हैं कार्यक्रम, पर हमारे गांव में कैसे और करगोपुर में कैसे त्यौहार जैसे होली पे खास करके मनाया जाता है?
2: जी जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमारे खरगोपुर में गोंडा जनपद है, गोंडा जनपद का नगर है खरगोपुर, जो 1904 में अंग्रेजों के समय पे भी टाउन एरिया रहा है, और उस वक्त से हमारे यहाँ परंपरा चली आई है, कोई ये हमारी परंपरा तोड़ नहीं पाया है। और ये प्रभाव जब हमारा देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद से हमारे खरगोपुर में, जैसे मथुरा में होली होती है, ऐसे हमारे यहाँ लोग कम से कम 8-10 जिलों के लोग हमारे यहाँ होली देखने आते हैं। होली में खास कर पर्व ऐसा पर्व मनाया जाता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि दिन में हम लोग जुलूस निकालते हैं, लोग ग्रुपिंग वाइज जो है एक भारी संख्या में पूरे नगर के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग एकत्रित होकर के ढोल नगाड़े के साथ में, साउंड ऑन के साथ में जो है वो पूरा जुलूस निकालते हैं, और जहां जहां होलिका दहन की जाती है वहां वहां जाकर के दर्शन करते हैं, उनका भभूति लेते हैं, और उसके बाद में फिर ये कार्यक्रम होली खेलते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, गुजिया मिठाइयों जो है अंबाल लगी रहती है, हर लोग एक दूसरे से मिल करके खाते पीते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जब शाम होती है, शाम होते होते एक नई रोशनी उदय होती है और हमारे यहाँ सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, और एक नई राधा कृष्ण के साथ, जो भगवान भोलेनाथ के साथ, पार्वती जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में एक दिव्य भव्य झांकी निकाली जाती है, जो पूरे नगर के क्षेत्र के लोग और आसपास के लोग, आसपास जिलों के लोग आते हैं, और पूरे प्रशासन के साथ जो एडिशनल एसपी एसपी लोग रहते हैं इस कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं, और दिव्य और भव्य झांकी होती है, और ये पूरे नगर का एक जो है एकमात्र ऐसा त्योहार होता है। ये आपके खरगोपुर का, विशेष रूप से खरगोपुर में, आसपास जिले में ऐसा कार्यक्रम भी नहीं होता है।

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने पंडित सूरज जी की, जैसे कि हम लोगों ने फिर भी कुछ उसमें से मैं निकाला हूँ कि जैसे होली में अभी जैसे पंडित जी ने कहा कि खाने वाला पकवानों में और गुजिया, तो ये भी आज तक हम लोगों मनाते और बना कर के खाते हैं इस त्यौहार में। पर जिस प्रकार से और जुलूस निकलते हैं, जैसे कि अबतोख बोले जाते हैं, और हर एक स्थान पे जहाँ पर जैसे पंडित जी अभी और चर्चा किए कि जहाँ होलिका दहन यथा होली को और दहन मनाया गया, वहाँ वहाँ जा कर के और सभी मिल कर के एक दूसरे के साथ मिलते हैं। पर पंडित जी ये बात हो जाता है कि हम लोगों ने भी सूरीनाम देश में भी कुछ देहाते थे, और जहाँ पर कुछ 60 लोग का परिवार रहते थे, और वहाँ घर घर जैसे क्रोनम्बेरो सूरीनाम में एक स्थान है, उसे क्रोनम्बेरो कहा जाता है, वहाँ भी घर घर जा कर के और ये जो चौताल आदि किया जाता था। तो जैसे कि अभी आपने चर्चा की है, तो वहाँ का और ऐसा वातावरण वहाँ का करगोपुर का कैसे किया जाता है?
1: यहाँ पर जो है जितने भी लोग होते हैं वो अपने स्थान पे जाकर के अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, और चौपाल लगा करके जो है हारमोनियम के साथ ढोलक के साथ बढ़िया जो है खेले अवध में होली ऐसे करके गानों के साथ में जो है, और तमाम प्रकार के जो है बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, आयोजन किए जाते हैं, और हर लोग जो है हंसी खुशी माहौल के साथ ऐसे ही जो है होली मनाई जाती है, और ये 8 दिनों तक लगातार चलता है। 2 दिन पहले से ही तैयारी होने लगती है कि हाँ भैया होली है, होली है। हमारे यहाँ बहुत विधिवत तरीके से, और हमें बड़ा गर्व है कि आप वहां पर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले और चौपाल लगा करके हर जगह जा करके लोगों से होली मिल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी विशेष बातें हैं। और

0: ये तो गर्व का बात हो जाता है पंडित जी ऐसा बात सुनने में, क्योंकि हमें जरूर जो हमारे पुरखों ने लेकर गए भारत से और आज तलक हम लोगों ने करते आए हैं, और हर हर जैसे कि आप लोगों पूरा सब जगह जा पाते हैं, तो हम लोगों का यहाँ जो शहरों थोड़ा दूर दूर से है, जैसे कि देन हाग, रोटरडम, लेवार्ड और अम्स्टरडम, इन शहरों में होलिका दहन का और मनाया जाता है, यानी कि होलिका दहन किया जाता है। पर हम लोग एक शहर से दूसरे शहर अभी तलक इस बात पे कभी चिंतन नहीं किया गया था, और ज़रूर इस जैसे कि आप कह रहे हैं तो हम सब के पास ज़रूर वो फैसिलिटी है, तो हम एक दूसरे के साथ ज़रूर जा जा करके इसका। और महत्वपूर्ण बात जो अभी आपने कहे कि एक दूसरे के साथ जा करके मिल करके और न सिर्फ गुजिया खाएंगे पर खूब एक दूसरे के गुलाल भी लगाएंगे। पंडित सूरज जी, मैं एक प्रश्न और रखने वाले हैं आपके साथ, पर जरूर एक इस बात को कहना चाहूँगा कि चौताल जो अभी हम लोग यहाँ चलाते हैं, और जो होलिका जैसे कि आपने कहा 8 दिन तलक वहाँ होते हैं, तो हम लोग यहाँ जब उसका कोशिश किया जाता है बुढ़वा मंगर तलक, उसके बारे में आपके क्या संदेश है?
1: ये बहुत बढ़िया प्रयास है आप सभी का। वही ये सेम चीजें हैं। आप तो मैं तो कह रहा हूं कि आप उसको जो है यहाँ की जो परंपरा है आप वहां निभा रहे हैं। होली का त्योहार ही इसीलिए होता है कि अगर मन मुटाव हो गया है, मन में मैल जग गया है, आभास हो जाता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं और जो है आपसी प्रेम सौहार्द बन जाता है, और एक दूसरे से मिल करके आपस में जो है बैठ करके जो जितनी बातें होती है एक दूसरे से परस्पर मिलन होता है। कहते हैं कि मन की आटी अटपटी झटपट दर्शन, जैसे अटपट मिट जाता है झटपट दर्शन हो जाता है। तो जब प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चाहो प्रजा चाहो शीश दिए ले जाए। जब आदमी झुकता है दूसरे के प्रति, गुजिया क्या है, गुजिया में मीठापन होता है। जब मीठा आदमी मीठा खाता है तो मिठास आता है। ऐसे ही एक दूसरे से जब मिलते हैं तो सारे वैर भाव भूल करके और प्रेम से मिलते हैं तो सारे वैर भाव भूल जाते हैं, सारे आपस की जो तनातनी होती गायब हो जाती है। उस दिन हम लोग प्रेम से मिलते हैं और जो है अगले साल के लिए एकदम से वादा करते हैं कि पूरा जीवन आपके साथ हम जो है ऐसे ही प्रेम स्पर्धा बना रहे। चलो।

0: अति सुंदर रूप से आपने गुझिया का संदेश भी रख दिया पंडित सूरज जी, जो हम शायद इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जो मीठापन है और ख़ास करके। पर इसमें एक छोटा सा प्रश्न और, क्योंकि मन में ये लालच बढ़ रहा है कि आपसे प्रश्न करते रहूं, पर हमें भी अपना रेडियो का समय पे ध्यान देना है, तो एक छोटा सा और प्रश्न रखता हूँ कि हम सब जो चौताल का और जो आखिरी वाला हम लोगों ने जब वहाँ से जो इस घर से यानी कि कहीं मंदिर है तो कहीं किसी के घर पे जा कर के चौताल करते हैं, तो आखिरी वाला हम लोग गाते हैं कि सदा आनंद रहे वो द्वारे मोहन खेले होली हो, तो वो अभी वहाँ गांव में भी होते हैं?
1: जी जी जी, गांव में होता है अब धीरे धीरे आधुनिकता के दौर पे, लेकिन फिर भी जो है हमारे बुजुर्गों ने आज भी जो है सजोए रखा है। हम सब युवा पीढ़ी को संदेश देते रहते हैं और हम सभी भी उसी को आगे ले जाने के लिए अथक प्रयास में रहते हैं, और गांव-गांव सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का, और साथ साथ एक कार्यक्रम और का जो है हम लोग कराते हैं कि जैसे होली हो जाए, होली होने के जैसे अभी इस वक्त होली हो चुका है, लेकिन हम लोग 8 दिन तक जो होली मनाते हैं वो प्रयास करते हैं कि कम से कम 8 एरिया में जा करके नए नए लोगों से मिल करके उनको अपना बना करके अपनी तरफ आकर्षित करते हुए और अपना प्रेम सद्भाव का शिक्षा दे सके, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सके, इसी को जो है होली कहा जाता है। होली मतलब होली, उसके साथ होलिया, वो मेरे साथ होले, प्रेम बना रहे। जी

0: संदेश सुनने वालों, जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे अपना गांव, हमारे अपना गांव जो करगोपुर है भारत देश, और ये बात है कि जरूर आप में ये दिल चस बनाने के लिए हम सब ये कार्यक्रम को रखते हैं। 105 तक यार 150 साल होंगे जो हमारे भारतवासी, हमारे पुरखों जो अपना और भारत को छोड़ करके सूरीनाम को गए थे, और सूरीनाम में जाकर आज कहीं 1873 से पीढ़ी जो सूरीनाम देश में, सूरीनाम से भी और होलांद देश में आए, और कभी ये प्रश्न रखिए कि मैं किसका बीच हूँ, मेरे और जब वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो आज हमारे साथ जो अपना गांव से जुड़ा हुआ पंडित सूरज देवराज जी, जो हम सब के लिए अपने ओर से संदेश दिए, तो पंडित जी कुछ और संदेश आपके ओर से है और हम सब के लिए, जो खास करके हमारे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों, जो आपके आवाज़ दुनिया में 188 देशों तक सुना जा सकता है, तो कुछ और संदेश से हम सबको सुनाइए।
1: अब सभी को, जितने भी लोग हैं, सभी को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। होली आनंद पूर्वक ऐसे ही बुढ़वा मंगल तक, जैसा आप लोग परंपरा बनाए हैं, ऐसे मनाते रहें, और ये होली सदा होली बनती रहे, सदैव प्रेम मिठास बना रहे, सदैव जो है एक दूसरे के प्रति अनुराग बना रहे, सनातन में श्रद्धा बनी रहे, यही सुभाषीष, यही आशीर्वाद, आप सभी का प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। जय श्री राधे राधे।
0: सुनने वाला, सुंदर रूप से हमारे साथ जुड़े रहे पंडित सूरज देवराज जी, जो करगोपुर भारत से और हम सब के अपना, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि अपना गांव से, जहाँ से हमारे पुरखों छोड़ करके और देश को और सूरीनाम गए थे, और वहाँ का संदेश हम सबको सुनाए। पंडित जी को एक बार से फिर हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, और गीत के बाद फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: बहुत गर्व के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ भी इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा संदेश लेकर हमारे परम आदरणीय पंडित नरेंद्र सरजूबी सिर जी, जो एक महान यज्ञ सूरीनाम देश में करके आए हैं, और उनके ओर से एक ऐसा शब्द उन्होंने प्रयोग किया जिसे हम थोड़ा बेचैन हो गए कि कैसे वो और किए। तो पंडित जी, सर्वप्रथम आपको स्वागत किया जाता है फहन हिंदुस्तानी रेडियो में, और जैसे कि अभी आपने हमें ये संदेश दिए कि आपने भारत को गए और भारत से नंदेश्वर महाराज को लेकर के सूरीनाम गए, तो पहले आप अपना एंट्री डालते हैं। पंडित जी, आपको स्वागत किया जाता है।
1: फाहन रेडियो की श्रोतागण, आप सभी को सब हृदय नमन, सब प्रेम नमस्कार। जैसे अभी आपने कहा है तो हम गत दिसंबर को गए थे भारत। वहां से शिव मंदिर, जो शिव मंदिर वेखनार पे पोत का है हंसू पे, तो उन्होंने निवेदन किया था नंदीश्वर भगवान को वहां से लाने के लिए, तो गए थे भारत। और वहां से वो नंदी महाराज को ले करके निकले बेंगलोर से, बेंगलोर से अबू धाबी, अबू धाबी से पहुंच गए फिर हॉलैंड में। तो कोई प्रकार के विघ्न बाधा इत्यादि नहीं उत्पन्न हुआ, और फिर यहाँ से हॉलैंड से उनका जो अंतिम स्थान था जहाँ उनकी स्थापना होने वाला था वो था शिव मंदिर वेखनार पेपर पॉट सरनाम हंसू में। तो यहाँ की जो है कई हजार किलोमीटर बाबा ने पार किया, और ये चिंतित थे हम कि कैसे बाबा को हम साथ ले जाएंगे, क्योंकि उनकी जो है स्थान वहां मंदिर में लोग बना चुके थे उनको वहां स्थापना करने के लिए। तो जबकि आप लोग को पता है कि हवाई जहाज में जाने से पहले सिक्योरिटी जो है संरक्षण जो है तो बहुत बहुत सख्त है, और मैंने सोचा कि चलो अगर बाबा को जाना है तो बाबा ही इसी सिलसिला में, इस समस्या में हाथ बटाएंगे। तो सिक्योरिटी पहुंचकर मैंने उन लोगों को संकेत कर दिया कि देखो ये हमारे बाबा हैं, वो मंदिर के लिए हम साथ ले जा रहे हैं, और आपसे निवेदन है इसको आप देखें। और बाबा की ही कृपा हुआ, बाबा ही तैयार हुए, बाबा ने सब आयोजन कर दिया कि सिक्योरिटी ने उनको सिर्फ स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उन्हें कहा मनेर यूमाखन, आप अपना जो यात्रा आप जारी कर सकते हैं। तो बाबा को भारत से ही हांत बखाशे में हम साथ ले करके पहुंचे हैं सूरीनाम। और जबकि इस यज्ञ के सिलसिले में वहां की जो योगदान देने वाले हैं, और जो उपसभापति है जो बहुत जनता के लिए और धर्म के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और बाकी जो हैं मंदिर के सदस्य और जो सभापति हैं और अन्य लोग, वो जब मूर्ति

0: जा करके वहां उनका स्थापना हुआ, बस बिल्कुल बाबा की ही आमने सामने। और जब भी आप नंदी महाराज के जो सिंह हैं, उनकी दो सिंह के ऊपर आप अपने जो है उंगली डालें, आप युद्धायम एंड युवाई सिंगर, अगर वो डाल करके और उस जो छिद्र है उसको बीच में आप देखें, और तो आपको साक्षात ही सामने बाबा दिखाना चाहिए, बाबा को आप उस रूप में आप देखेंगे। सो हुआ ये, और बड़ी बड़ी श्रद्धा और बड़ी प्रेम के साथ ये यज्ञ को जो है लोग सुसंपन्न किए। और जबकि हंसू में पहली बार ये जागरण का प्रोग्राम महाशिवरात्रि के अंतर्गत रखा गया था, तो काफी लोग वहां पधारे। तो ये जो श्रेय है, ये श्रेय हमारे धर्म का जो है, ये है हमारे बाप दादे के ऊपर जाते हैं, जिन्होंने हम सब के ऊपर वो संस्कार डाले, हम लोग के अंदर में संस्कार डाले, और अपना संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना भाषा भेषा और भूषा को बता करके हम वो जो सूरीनाम में अब चौथा या पांचवा पीढ़ी अब चल रहा है। तो ये था एक छोटी सी संकेत इस विषय पर, और ना कि 150 वर्ष पहले, लेकिन आज तक भी साउथ अमेरिका में सूरीनाम सिर्फ एक देश ही है जो अपना जहां जिसको लिटिल इंडिया कहते हैं लोग, जब जहां की अपना संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना धर्म, अपना भाषा, अपना भेषा और भूषा सब अभी कायम रखे हुए हैं, ताकि ये भी इस बात को प्रेसिडेंट मोदी जी ने कई साल पहले वो गए थे सूरीनाम, और यहाँ हॉलैंड में रुक करके उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर आप जानना चाहते हैं हम क्या हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो सूरीनामी लोग से आप मिलें, सूरीनाम से जो है आप जाकर देखें कि हमारी क्या है। बाकी अन्य देश जो आसपास में है वहां तो संस्कृति और सभ्यता तो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, लेकिन सूरीनाम एक ऐसा देश है जहां जैसे बाप दादे पहले आए थे वहां ही ऐसे सब लोग ऐसे कर रहे हैं। और सो क्योंकि भारत का उन्होंने एक एक उदाहरण दिया कि आजकल के जो माँ बाप हैं तो अपना मातृभाषा छोड़ करके, चाहे वो हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वो भाषा को छोड़ करके इंग्लिश भाषा में बच्चे से बात करते हैं। तो वहाँ हमारी जो संस्कार है, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता है, उसमें जाकर लुप्त हो जाता है। और यहाँ तक इसी संकेत से अपना वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अब ये अवसर हमको प्रदान किए। 5 जून को तो 150 साल हो गए हैं जो भी हमारे पुरखे श्री राम को ढूंढने के लिए, श्री राम को पाने के लिए अपना देश छोड़ करके वहां पधारे। और ये बड़े गर्व के बात है कि हमारा निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारा दृढ़ता अभी तक बना रहे और बना रहेगा, यही भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत।
1: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी, जो अपने अमृतवाणी से हम सबको अपना संदेश रखे, और ख़ास करके ये संदेश है कि भारत से अभी हम सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि नंदेश्वर स्वयं भारत से जाकर के सूरीनाम में विराजे हैं। तो हम कार्यक्रम के और अपने समाप्ति पे आकर पहुँचे हैं। आशा ये रखता हूँ कि कार्यक्रम में ज़रूर कुछ न कुछ संदेश आपके मिले होंगे।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे और सहयोग दिए पंडित सूरज देवराज जी, जो खरगोपुर और भारत से हमारे साथ जुड़े, और हॉलैंड से पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी, जो अपने ओर से अपना संदेश रखे। आशा ये रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश जरूर आपके पास पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मैं हूँ संजय और सभी को एक नमस्कार।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं। फिल्म फर्ज में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। फाउन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वादिकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वादिकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाहें यार ने कि एक ऐसा जादू भर दिया, और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं, सुना रहे हैं।

शिकार करने का आए शिकार हो के चले, ये गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलकर आपको सुनाइए ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं आओ प्यार करें में। औरतें गाना तो है लेकिन कौन सा गाना मैं चलाने वाला हूँ लता जी की, ये सुनिए।

Zo, gaan ze patachel ta, ze is toch wat van plan. लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं। योजना तो बहुत बनाया मौसम के देखकर। बहरहाल फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की, तो अगर ये गीत पेश की तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में, फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी बयाना बता देते हैं। ये गीत गाया गया है सी रामचंद्रा, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हीं के साज पर, लता जी के साथ फिल्म अलबेला में। तो बात ऐसे है कि अब कौन रात्रि के 12 बजे रात्रि को यहाँ स्टूडियो आएगा और बैठकर आपको ये गीत सुनाएगा, मेरे बस के तो बात नहीं है। शायद कभी साल में एक बार हो जाए कि 12 बजे रात्रि को मैं यहाँ आऊँ, स्टूडियो में बैठूँ और आपको पहले बताऊँ कि गंगा ये गीत चलाने वाला है। ये नहीं करेंगे, चलिए ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं, क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था, हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

श्री रणचंद्रा के साथ परचितल का रामचंद्र खुद और लता जी के साथ ये द्वैत हम आपको सुनाए हैं फिल्म अलबेलाल में से निकाल कर। अब ये तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 12 बजे रात्रि को कोई हमारे को लिखा या मैं आकर ये गीत आपको सुनाऊं तो लगे हाथ हमने अभी आपको सुना दी। यूँ समझिए कि 12 बजे रात्रि है, आपने आँख मूंद ली है, रात हो गया। बहरहाल फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो चुन किए हैं इस मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

में प्रेम प्यार मोहब्बत के जगह मिले हैं। वह क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए ये गीत हमने प्लेयर में और रखे हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है। नागपंचमी में से नेगेटिव तुम्हें सही फिल्म

वाह क्या बात है, यह शानदार गीत पेश हुआ हमने चलाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ चलो ये गीत सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

0: नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है, लता जी की आवाज में। और माई तू मुकेश आपको सुनाए फिल्म कोबरा ग्यूल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की।
1: तो यहां से पहला शेर हम आप लोग को और सुनाए हैं, और ये है फॉर ऑल द लवर्स, कहते हैं तहजीब में भी उसकी क्या खूब अदा थी, तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क कर। वाह रे दोस्तों, कि तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क करे। तो हम चलते हैं, देखे दिखने में भोले हैं, दिखने में बहुत भोले हैं, लेकिन चाल जो है वो अग्नि के समान है। तो ये बात है कि देखने में भोला है, और बॉम्बई का बाबू 96 का मूवी है, और क्लासिक सॉन्ग है, और बॉम्बई का बाबू की ओर हम चलते हैं।

और दिखा मैनी भोला है। और ये आशा भोसले का ये गाना है बम्बई का बाबू, और ये फिल्म का नाम है। तो जितने लोग दूर है तो दूर के मुसाफिर के लोग के लिए हम कुछ गीत और शेर आज हम आप लोग को सुनाए हैं कि कहते हैं फरियाद करके, फरियाद कर रही है ये तरस रही हुई है निगाहें, फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें। जो लोग दूर रहते हैं तो फरियाद तो बहुत करते हैं, तो कहते हैं फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें, और देखे हुए किसी को ज़बाना गुजर गया है, देखे हुए किसी को ज़माना गुजर गया है, और जो किसी को देखे हुए ज़माना गुजर गया है तो उसके लिए हम एक स्पेशल सॉन्ग चलाते हैं कि जो अगर दिल के आरमा जो है वो जो टूट जाते हैं तो आंसू बनकर, आंसू बनकर आंखें में झलक जाते हैं।

0: और दिल के अरमां आंसू में, और वो रह गए और कहते हैं ये कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम दिल को हम कह कह के ये हम कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम कह कह के दिल को समझा रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं हमारे दोस्तों। इंतजार में लोग बहुत बहुत बहुत बहुत यादें करते रहते हैं हमारे यारो, ये सब बात होता है जब किसी के इंतजार करते हैं, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तन्हा सफर करते रहे, वो तो बीते वक्त उन्हें आने ना था, हम यूं ही सारी रात भर घबराते और बतलाते रहे। और जब कभी कभी लोग कमरे में रहते हैं तो कमरे की जब ताला कर देते और चाबी गुम हो जाते हैं, तो जब चाबी गुम हो जाते हैं तो लोग तुरंत क्या सोचते हैं, हम आपको बताते हैं।
1: अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो,
0: सोचो कभी ऐसा हो तो भला क्या होगा,
1: कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम
0: तो जब चाला चाभी लाश हो जाते तो लोग कांपते लगते हैं।

0: कौन?
1: और हम तुम जब अपने कमरे में बंद होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अभी आप लोग हमें जरूर बताना कि क्या सुन सकते हैं दोस्तों। नॉर्मल्स हम सब एथर पे भी सुनाई देते हैं, यानी अपनी गाड़ी में सुनाई देते हैं, ऑटो में जब बैठेगे नीदरलैंड के बातचीत होते हैं ना सूरीनाम या अन्य देशों में, तो यहाँ अपने ऑटो में सुनाई देते 15.7 AM फ्रिक्वेंसी पे आप लोग 24 घंटा हमारा प्रोग्राम को श्रवण कर सकते हैं। और हम सुनते हैं और देहाबी प्रेस रेडियो पर पूरा हॉलैंड देश में सुनाई देते हैं। नहीं आप लोग www.fahun.nl हमारा यानी कि इंटरनेट पे पूरा विश्व में पूरा दुनिया में हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। हमारे यारो तो हम भी चलते हैं और एक शायर की ओर। और शायरी अब क्या है, उल्फत के मारू से ना पूछो अलाम इंतजार का, उल्फत के मारू से ना पूछो अलाम इंतजार का। और 85 है जिंदगी और ख्याल है बहार का, 50 से है जिंदगी और ख्याल है बहार का। हमारे यारो एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक मोहब्बत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है दोस्तों। मुद्दत हो गया है, एक मुद्दत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है। तो हम जा रहे नरगिस राज कपूर के ओर और मूवी के नाम है चोरी। और चोरी चोरी चोरी में क्या होता है, और दादा नहीं पद्मश्री मन्ना दी और नैतिक लता जी मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ हम सब सुना जाए।

और आ जा सनम मधुर चांदनी में हम, और जब तुम मिलेंगे तो बहारों में फूल बरसेगा। और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, आई जिंदगी तेरी भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आहत ना रही। ये किसी के दिल किसी से टूट जाते हैं हमारे यारो, तो ये सब बात निकल आते हैं। तो कोशिश करना कि अपना मोहब्बत जो है, अपनी मोहब्बत के मजबूत पकड़ के रखना, जबरदस्त पकड़ के रखना, और इतना जबरदस्त पकड़ के रखना कि उसमें दरार ना आवे। ये है कि मुझको अब तुझसे अगर जब अपने प्यार को अपने दिल को मजबूत जबरदस्त नहीं पकड़ के रखेंगे, तो ये सब शायरी आपके लिए है कि मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, ऐ जिंदगी तेरे भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आदत ना रही। तो उसको भूल जाना बहुत मुश्किल के बात है। और मैं थी मुकेश, नहीं थी गिल, लता मंगेशकर या जोंग आपको बताएंगी कि किसी को भूल जाना कितनी दुख देता है। इस फिल्म में यानी कि जीन तमन मनोज कुमार ने काम किए हैं और मूवी का नाम है रोटी कपड़ा और मकान की ओर हम चलते हैं।

और मैना भी आपको, मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगा। जब आप हमें भूले नहीं देगी तो भला जोनी आपको कैसे भूलेगा। हमारी यारों की कहते हैं मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, अभी हमने कह दिए थे लेकिन अब कहते हैं कि ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, किसी की जान गई आपकी अदा तेरी। जी दोस्तों कि कब आ रहे हैं हो, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, हमने चांद रुका है, हमने चांद रोका है एक हमने चांद रोका है एक रात के लिए, इसलिए कि पहला पहला प्यार में क्या होता है।

हम दोनों दो प्रेमी और दुनिया छोड़ चले रोमांटिक सॉन्ग है, रजेश खन्ना का फिल्म है, दादा किशोर कुमार जी और नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो। और ये गीत है, फिल्म के नाम है ताज नेगती सेशन फाइव तक के, दादा हेमंत कुमार और दादा हेमंत कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

और गोरी बुलाए तेरा सांवरिया, मनाए तेरा सांवरिया, और ये बात है मान भी जा। तो ये फिल्म के नाम है बेताम, सोनी देओल अमृता सिंह का और नैति के लता जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए फनत यार नीखती होंड तेंद्री इन तख्त का ये गीत है।

और जब हम जमा होगे जाने कहाँ होगे। और हम और आगे को चलते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं भैया कांति कुमार के ओर। जोकर तो आओ मिल करे सुना जाए।

में जल दे रहे, क्या हुआ ये मुझको, क्या हुआ है। और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहते हैं।

लाखों है निगाहों में जिंदगी के राहों में पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये एक मोहब्बत भरी और ये गीत है एक बार ना एक बार बार बार बार बार माइक मुकेश और करोड़ों को चुराने वाला करोड़ों का दिल चुराने वाला माइटी मुकेश और आशा जी आ रहा है एक बार ना सौ बार।

माइल की बुकेर आशा जी का ये दिल लेकर नजराना का ये सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं कोई जलवा का ओर, और वो है पद्मांश श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, और इस गीत को बेटी और बेटा का सुनना चाहिए, मूवी का नाम है दोस्तों।

अगर तेरी जलवा खुदाई न होती तो क्या क्या होती। उसके बाद हम चलते हैं कि मेरे दिल रुबा ना गुस्सा, मेरे दिल रुबा मुझ पर खफा न हो। पद्माश श्री मोहम्मद रफी का ये पुराना सॉन्ग है दोस्तों, नुपर मोफी है दोस्तों। तो ये गीत आपको हम सुनाए जाते हैं, आओ सुना जाए।

मोहम्मद रफ़ी, परमा श्री मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ मुकेश माइती मुकेश के भी गीत बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो एक माइती मुकेश का भी हो जाए। ठोकर मौफी का नाम है, नेखती सेफ तक का ये हिट सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं ढूंढता हूं किसको, ये आपको तो पता होगा, और हम भी है तुम भी हो। मैती मुकेश गीता दत्त का ये सॉन्ग है मूवी मूवी मूवी, राज कपूर।

इस गीता दत्त लता जी का ये सॉन्ग है और इसमें काम किया है राज कपूर पद्मिनी के साथ हम चलते हैं एक मनोज कुमार और मल्हार सिन्हा का मूवी जिसमें माइती मुकेश भी अपना गीत को गाया है और वो है हरियाली और रात।

मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। मौफी का नाम है हरियाली और रास्ता सुनाएंगे महेंद्र कपूर का ये और एक सुपर हिट सॉन्ग है लाइफ लाइफ लाइफ ऑफ खनो वुमेन्स।

और एक लाइव सॉन्ग थे महेंद्र कपूर का सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, मूवी के नाम है हरियाली और रास्ता, जिसमें मनोज कुमार मल्हा सिन्हा ने काम किए हैं। करोड़ों का दिल चुराने वाला मैथिली बुके ए नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है।

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ, मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंह मान फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुगल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना, जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में ऐरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर, चौथे में लक्ष्मी जी, पांचवे में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख शांति का उपदेशक, महान गुणवान, शांत गंभीर, त्रिकलाज्ञ एवं देवता। महावीर जी, भगवान महावीर बहुत अच्छे गुणवानी, संतोषी और एक अच्छे भगवान हुए हैं।

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलिए कंधों का फड़कना कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाईं तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाईं तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तो बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना, सुनने वालों हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं वो भी कभी कभी फड़कती है, तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना, सुनने वालों हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वाला बोहें कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब बाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दायां गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ की स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बायां गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि हम लोगों का नाक कब फड़कता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है, किसी से झगड़ा होता है, आने वाले संकट रोग की सूचना मिलती है, अनेक प्रकार से सुख मिलते हैं,

सुनने वालों, अपने शरीर के सभी अंग फड़कते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कब फड़कते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मुंह का फड़कना। हम लोग के मुंह भी फड़कते हैं सुनने वालों। समाचार मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। होंठ का फड़कना, जब हम लोगों के होंठ फड़कते हैं तब हमें सुख समाचार मिलता है, शत्रुओं से समझौता होता है, हितेशी का आगमन होता है कि जो हमारा कोई अपना जानने पहचानने वाला है वो हमारे घर पर आते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता सुनने वालों, अशुभ होता है। ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे, जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है सुनने वालों। उबकाई आने लगे, जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है, जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, सामान्य जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो, जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूता उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है। परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ ना मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आँख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारे गाय हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पाँव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रूबरू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाउन हिंदुस्तानी के रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार और प्रणाम। आज जो हम विषय लेके आए हैं, बहुत ही गंभीर विषय है, ध्यान और प्रेम, मेडिटेशन एंड लव। व्हाट इज़ द मेडिटेशन एंड व्हाट इज़ द लव? तो ध्यान क्या है, प्रेम क्या है? तो आज के जो विषय में हम यही सब बने रहिए श्रोताओं आखिरी तक, और इसके बारे में समझिए कि ध्यान और प्रेम के बारे में। तो अब हमारे आज विवान जी भी उपस्थित हैं, संजय जी अभी आने वाले हैं और शांता जी उपस्थित हैं। तो विवान जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: Goedenavond iedereen en namaskar.
2: हाँ जी, आपने विवान के आवाज़ में सुने, और यहाँ से कहती हूँ कि आंखें भी खोलनी पड़ती है, आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए। केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। ज्योति का प्रकाश के कार्यक्रम में आपको शांता की तरफ से स्वागत और प्यार भरी राम राम प्रणाम।
0: तो क्यों ना शांता जी, जो लोग उदास बैठे हैं उनके लिए कुछ चलाया जाए?
2: जरूर से, हमेशा की तरह, जो उनके उन्हें भी अच्छा लगे प्रोग्राम आगे में सुनने के लिए, उदासी जो है दूर हो जाए।
0: हाँ जरूर।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। तो राम जी तो बेड़ा पार सबका करते ही हैं, तो इतना चाहे कोई भी मन उदासी रहे। तो बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। शांता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: एकदम से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे।
0: ओके जरूर,
1: क्योंकि बहुत से ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले ऐसे बहुत से तार आ गया था और बहुत से लोग ऐसे तैयार होकर भी सुन रही है, तो यहाँ से आप जरूर से छलांग लगा देना।
0: जरूर।
1: आज के विषय जो है,
0: आज का जो विषय है उसका प्रश्न क्या है आपका?
1: प्रश्न वो है ध्यान क्या है
0: और
1: प्रेम क्या है। ध्यान और प्रेम के बारे में आज हम यहाँ से बात करेंगे।
0: तो इसी विषय में आगे बात करते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान है पर्दा हटाने की कला, यानी जैसे हमारे आंखों के सामने कोई पर्दा है और सामने दृश्य है और नहीं दिखता है
1: जी,
0: तो वही ध्यान के माध्यम से वो पर्दा हम हटा देते हैं और सामने का दृश्य दिखने लगता है, वही कला है। और यह पर्दा बाहर नहीं, यह पर्दा हमारे भीतर पड़ा है, हमारी अंत स्थल पर पड़ा है। ध्यान है पर्दा हटाना, पर्दा बुना है विचारों से, और आपके जो विचार हैं उनसे ये पर्दा बुना है। विचार के ताने बानों से पर्दा बुना है, अच्छे विचार बुरे विचार इनके ताने बाने से पर्दा बुना है। जैसे हम विचारों के पार झांकने लगे या विचारों को ठहरने में सफल हो जाएं, या फिर विचारों को हटाने में सफल हो जाए, वैसे ही ध्यान घट जाएगा। निर्विचार दशा का नाम ध्यान है, यानी प्रेम है। तो प्रेम जो कुछ भी हो, अब बात है प्रेम की। ये तो बात ध्यान की थी, प्रेम की बात है।
1: और ध्यान में पर्दा हटाना चाहिए।
0: हाँ, पर्दा हटाना चाहिए,
1: यानी कि अपना सोच में कुछ बदलाव लाना चाहिए
0: जी।
1: अच्छा,
0: अब बात करते हैं प्रेम की
1: जी।
0: तो प्रेम जो कुछ भी हो, उसे शब्दों में कहना का उपाय नहीं है। यानी प्रेम जो कुछ भी है, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, और कोई उपाय भी नहीं है शब्दों में कहने का।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो फिर क्या है?
1: हाँ, तो फिर क्या है, ये मेरे भी प्रश्न है, तो फिर क्या है?
0: क्योंकि वहां कोई विचार नहीं है, प्रेम तो अनुभूति है, उसमें डूबा जा सकता है परंतु उसे कहा नहीं जा सकता। प्रेम पर विचार न करे, विचार को छोड़े और फिर जगत को देखे, उस शांति में जो अनुभव में आएगा वही प्रेम है।
1: अच्छा, यानी कि प्रेम प्रेम महसूस किया जाता है।
0: हाँ,
1: इनका शब्द नहीं, इसका बात
0: उसमें डूबा जा सकता है।
1: अच्छा,
0: तो प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल भी किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। बर्दराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया था। बर्दराज एक हुए हैं व्यक्ति
1: जी,
0: उनके बारे में बात चल रही है कि उनको भी सब लोगों की भांति ही गुरु के यहाँ आश्रम में भेज दिया गया था
1: जी।
0: तो फिर आगे का जो विषय है, आगे जो बात चलेगी, एक सुंदर सा नगमा के बाद कि स्कूल में जाने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, तो क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़े और आगे की बात करें।
2: गीत निकाला जाएगा शांता जी का पिटारा से।
0: हाँ, शांता जी का पिटारा
2: भर कर फिर लाए हैं और गीत हम सब जरूर सुनेंगे राजेंद्र
0: जरूर जी। संजय जी भी उपस्थित हो गए हैं और हमने आपका पहले इंट्रोडक्शन दे चुके हैं,
2: और क्या,
0: और आपका जो रूबरू वाली बात थी वो भी पूर्ण हो चुकी है तो एकदम वैसे ही रहा,
2: यही बात। तो राजेंद्र जी क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर हम
0: जरूर

0: प्रेम रतन धन पायो रे, तो क्यों प्रेम रतन धन की तो बात चल रही थी सारी।
1: मैं देख रही थी राजेंद्र जी, आप ये गीत में एकदम गुम हो गए थे।
0: हाँ,
2: तो प्रेम रतन पायो, तो राजेंद्र जी प्रेम जैसे कि आज का विषय जो रखे है, इतना सुंदर रूप विषय ये जो है कि प्रेम, तो क्या कुछ और सुनाने वाले हैं आप प्रेम के बारे में?
0: हाँ, बात चल रही थी बर्दराज की। बर्दराज जब आश्रम में गए, गुरुकुल में गए, तो उनकी बात चल रही थी। तो वह आगे बढ़ते हैं उसी तरफ। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था।
1: ओहो।
0: उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिरी हार मानकर उसे बोला, बेटा बर्दराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। तो बर्दराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, विद्या ददाति विनयम, विद्या उसकी किस्मत में नहीं है, उसने सोचा, और भारी मन से गुरुकुल के घर के लिए निकल गया। गुरुकुल से वो निकल गए घर के लिए। दोपहर का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही है। वह कुएं के पास गया, वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने की निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटी यह निशान हमने नहीं बनाए हैं, यह तो पानी खींचते खींचते इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर भी ऐसे निशान बन गए, पत्थर कट गया तो इसलिए ऐसे निशान बन गए हैं। बर्दराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी से बार बार आने जाने इस पर ठोस पत्थर भी गहरे निशान पड़ सकते हैं, तो क्यों न मैं भी निरंतर अभ्यास में विद्या ग्रहण करने क्यों नहीं कर सकता हूँ।
1: ठोस पत्थर माने कि?
0: ठोस पत्थर मतलब यानी पत्थर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है,
1: कड़क होता है,
0: कड़क होता है। हाँ। और आप उसमें रस्सी ऐसे लगाओगे तो थोड़ी वो घिस जाएगा, लेकिन बार बार उसमें रस्सी घिसटेंगे तो वो उसमें भी निशान पड़ जाएगा और घिस जाएगा, कट जाएगा पत्थर,
2: यानी कि निशान हो जाता है।
0: हाँ, रसरी आवत पा जात पे सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब है करत करत यानी रोज रोज अभ्यास करने से जड़मत जड़ से सुधार हो जाता है, सुजान कह रहे हैं। रसरी आवत जिस प्रकार से कुएं से रस्सी खींचे
1: जी,
0: और जो कुएं के बगल में पत्थर रखा रहता तो उसी पत्थर से रस्सी नीचे जाती है
1: जी,
0: तो फिर वो जो नीचे जाती ऊपर आती तो रोज घिसता हो
1: जी,
0: तो फिर सिल पर पड़त निशान, तो अगर पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है तो हम क्यों नहीं याद कर सकते किसी चीज को। तो ऐसे बर्दराज ने भी किया।
1: तो बर्दराज ये देख कर उसका भी एक चेतन जागा उनका।
0: हाँ,
1: क्योंकि गुरु जी कहा कि तुम पढ़ नहीं पाते हो गुरुकुल में, तुम घरे चले जाओ।
0: हाँ।
1: पर अबे घर नहीं पहुंचा, वो प्यासे के कारण वो कुआं पहुंच गया और वहां पे एक रस्सी के कारण जो सिर पे रेखा आ गए, मार्क आ गए, तो उनसे उसके मेरे ख्याल से, मैं तो अभी नहीं जानती हूँ, अब राजेंद्र जी आगे कहेगा तो मैं उसके आगे में भी कुछ समझ जाऊंगी।
0: बर्दराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत करने लग गया।
1: अच्छा,
0: अथक मतलब बहुत मेहनत करने लग गया। गुरुजी भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया, गुरुजी ने भी उसका सहयोग किया जो मेहनत करने लग गया। कुछ ही सालों बाद यह मंद बुद्धि बालक बर्दराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया। जिससे लघु सिद्धांत कौमदी, मध्य सिद्धांत कौमदी, सार सिद्धांत कौमदी और गिवर्ण पद मंजरी की रचना की। आगे जाकर उसने इन सब संस्कृत के जो भाष्य हैं इनकी रचना करी और वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो क्यों ना दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करती है। अभ्यास
1: और मेहनत, लगन, मेहनत,
0: बार बार जिस चीज को बार बार किया जाए उसको अभ्यास कहते हैं, और मेहनत से ही होता है। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या और किसी चीज में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिरी में आपको केवल पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए एकजुट हो जाइए और सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यानी जो आपको मिला है वही उतना ही बहुत है। इसलिए चाहे आपको हर समय प्रसन्न रहना, ये नहीं कि अब ये हो गया तो मेरा वो हो गया तो वो हो, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ, तो वो कुछ नहीं। केवल आप मेहनत करिए और हर समय प्रसन्न रहिए। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय में?
2: अब कहूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कहना चाह रहे हो तो कह दूँ शांता जी?
1: एकदम
2: एकदम। तो दोस्तों, जैसे कि राजेंद्र जी और शांता जी ने और फोर्स कर रहे हैं कहने को, तो जरूर सुनाने को भी इच्छा भी कर रहे हैं। तो ये होता है कि मिलता है बहुत कुछ।
1: अच्छा,
2: मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी के करते हैं जो हासिल ना हो सकता है। राजेंद्र जी, जैसे कि अभी आपने समझाया कि बहुत मेहनत करने पड़ा और बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अब देखो, हम लोग जाते हैं ना वहाँ योगा लेस, तो योगा लेस पे जा कर के भी कितना, और वहाँ पर लेस मिलता हम सबको और सब डायरेक्शन सब प्रकार के, पर अभ्यास भी ज़रूरत है। अभ्यास जो नहीं करेंगे तो कल जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, परसों जाएंगे तो बस और ज़्यादा। तो हम सब, शांता जी, इस पे आपका क्या ख्याल है, अभ्यास और मेहनत?
1: अभ्यास करने से, जैसे हमने यहाँ कहा है, राजेंद्र जी आपने भी कहा है, अभ्यास करने से तो लोग आगे बढ़ते हैं,
2: तभी लोग आगे बढ़ सकेंगे।
1: हाँ, अगर हम भी अभ्यास नहीं करते तो आज हम यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो में नहीं होते।
2: नहीं होते
1: जी।
2: अच्छा राजेंद्र,
0: तो कहाँ होते,
2: तो कहाँ होते? हाँ, ये प्रश्न हो जाता, तो होते कहाँ?
1: पता नहीं कहाँ, किसका हाल कहाँ पे रहता, अपने अपने घर पे होते।
2: तो दोस्तों, ये बात है कि राजेंद्र जी भी इस समय हम सब के लिए शांता का पिटारा में हाथ डाल दिए है और चला रहे हैं कंप्यूटर के ओर अपना बटन, क्योंकि एक सुंदर सा गीत के ओर हम सब बढ़ना है।
0: जरूर।
2: और पिटारा से निकाला गया कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं राजेंद्र जी?
0: गीत नेपाल का है, इस बार भारत का नहीं है,
2: नेपाली गीत चला देते हैं।
0: तो शांता जी के पिटारा से निकला है तो उसमें कुछ में कुछ ना कुछ खासियत होगा,
2: कुछ ना कुछ खासियत होगा,
0: चाहे कि उसको ही चलाए,
2: चला देते हैं राजेंद्र।
0: जरूर।

0: दोस्तों जैसे कि अभी आप सुन रहे थे तो, और राजेंद्र जी जो नेपाली गाना और रखे हम सब के लिए, और शांता का पिटारा से निकाला हुआ और उसे हम सब सुने। और शांता जी एक यहाँ मैसेज आए हैं, मैसेज आए हैं और उन्होंने कह रहे हैं कि भाई हो सके तो सुनाना। तो ये सुनाना कह रहे हैं कि हो सके तो सुनाना, तो हम क्यों ना सुनाए इसी वक्त डायरेक्ट यहाँ फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से, और यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। और जैसे कि मैसेज में भेजा गया है कि हाथ ने पैरों से पूछा सब तुम्हें प्रणाम करते हैं, हाथ ने पैरों से पूछा कि सब तुम्ही प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं, ऐसा क्यों?
1: हाथ ने ये
0: प्रश्न पैरों से किया।
1: अच्छा।
0: तो पैर क्या कहते हैं? पैर ने बोला उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप सुन रहे हैं कि ये मैसेज जो आया अच्छा संदेश है कि हाथ ने पैरों से पूछा सब तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं। तो पैर ने बोला कि उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। तो राजेंद्र जी इस पे आपका क्या ख्याल है?
2: इस पे हमारा ख्याल यही है कि जो जमीन पे रहेगा उसको सभी प्रणाम करेंगे, हवा में रहेंगे तो कब तक हवा में रहेंगे।
0: सही बात राजेंद्र जी। एक बात, कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले भी आज हमारे साथ है विवान भगवान जो योंगरब के लिए कुछ अभी कार्यक्रम रखने वाले हैं मेरे ख्याल से। शांता जी विवान ऐसा है?
2: हाँ
0: हाँ, तो हाँ। योंगर के लिए कुछ सुंदर सुंदर गीत लेकर आए हैं, तो अभी उसका कार्यक्रम जरूर हम सब सुनेंगे। पर विवान कई ऑन्स वात फर्टेलन वात डू ये वेलस सोख्तंस आशे ऑप्स्टाट वात डू ये सोख्तंस आशे ऑप्स्टाट
3: बेदा
0: एंड हु डू ये दैट विवान
3: मत मंत्रस
0: एंड वेलकम मंत्र डू ये वनेर ये ऑप्स्टाट
3: ligt eraan, maar tomeva mata chapita tomeva tomeva bandhu se sakha tomeva tomeva vidya travinam tomeva tomeva sharanam mama deva deva.
0: Vivan, dit is een hele mooie mantra, tomeva mata chapita, dat weet iedereen denk ik. Shanta ji, ye baat hai ki na, sabhi koi jyada tadat mein jante hi.
4: Sahi, aap sahi.
0: Aur Vivan, je hebt op de Vishnu school gezeten, dan heb je ook nog meer mantras daar geleerd, zeker. Maar voordat we verder gaan, dit is de ochtendgebed, hè? En wat betekent dat?
3: U bent de moeder en de vader, u bent familie en vriend, u bent wijsheid en rijkdom, u bent alles, o mijn verhevene.
0: Heel mooi verteld. En Johan, want we moeten nog verder gaan met ons programma, maar toch wil ik het sluitings, wanneer je naar bed gaat, moet je dan ook bidden?
3: Ja.
0: En hoe doe je dat?
3: Namaste sate te jagat karunaya, namaste sate sarva loka kasharanaya, namo dvaita tattavya mukti pradaya, namo brahmane vyapine shash devataya.
0: Dat is wanneer je zeg maar als je naar bed gaat. Dat zou wel fijn zijn. En wat, dat is in het Sanskriet, hè? Wat zou dat in het Nederlands betekenen?
3: Wees gegroet, gij werkelijke, o oorzaak der wereld. Wees gegroet, gij albewuste, o stut des heelals. Wees gegroet, gij zonder tweede, o schenker der verlossing. Wees gegroet, gij alomtegenwoordige en eeuwige bestaande.
0: Mooi verteld. Dosto jaise ki aap sun rahe ki ye karyakram मैं हम सब कुछ संदेश रखा जाता है, और यौंगर जो है कि कम से कम वो जो ये कार्यक्रम को सुने तो ये जाने कि हम सब में ये एक धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, फिर भी हम सब कुछ ना कुछ संदेश लेकर आपके लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। और इसमें अब जोड़ लिया गया है यौंगर के और विवान को, विवान जो हरदम कुछ ना कुछ हर समय कुछ ना कुछ हम सब के लिए छोटा छोटा चाहे छोटा सा संदेश हम सबको सुनाने वाले हैं। पर राजेंद्र जी आज का कार्यक्रम अभी तो बाकी है।
2: हाँ, आज का कार्यक्रम बाकी है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, तुलसी की ओर बढ़ते हैं।
0: तुलसी मैया?
2: हाँ, तुलसी धरती का अमृत है, जानिए तुलसी के प्रकार और स्वास्थ्य लाभ में तुलसी का क्या प्रयोग है, कैसे तुलसी धरती का अमृत है, कैसे स्वास्थ्य लाभ में काम करते हैं, इसको हम बारीकी से जानेंगे तो सब लोगों को बड़ा इसका प्रभाव रहेगा।
4: जी,
2: तुलसी रस पिए और निरोग हो जाएं। तो तुलसी का जो रस होता है
4: जी,
2: उसको पीने से व्यक्ति निरोग हो जाता है। तुलसी मनुष्य रूप से 5 प्रकार की पाई जाती है। मनुख मुख्य रूप से, यानी जो 5 प्रकार की तुलसी है मुख्य रूप से पाई जाती है, एक है श्यामा तुलसी, दूसरी रामा तुलसी, फिर श्वेत तुलसी, फिर विष्णु तुलसी और फिर वन तुलसी,
4: और सारे तुलसी,
2: हाँ, और नींबू तुलसी भी। इतने प्रकार की तुलसी पाई जाती है।
0: तो ये होलैंड
2: मुख्य प्रकार से,
0: होलैंड में ये पांचों नहीं होगा मेरे ख्याल से।
2: नहीं, होलैंड पे तो मैंने 3-4 किस्म का देखा है।
0: वो तो एक ही बाकी है, तो वो भी आ जाएगा।
2: आ जाएगा। वन तुलसी भी देखा है, विष्णु तुलसी भी देखा है, रामा भी देखा है, और सफेद तुलसी भी देखा है। नींबू तुलसी यहाँ नहीं देखने को मिला।
0: नहीं देखने का मिला। अच्छा, तो चलो उसके हम लोग के लिए, हम सभी सुनने वालों के लिए इस पे ध्यान देना कि कहीं भारत में जाए तो नींबू तुलसी का और भी लेता ना ना।
2: हाँ,
0: ताकि होलैंड में भी धीरे धीरे सचर सके, क्योंकि पहले शायद कुछ नहीं होगा और धीरे धीरे अब देखो 4 प्रकार का होलैंड में आप देख ही चुके हैं, तो अब 5वां भी आना जल्दी हो जाएगा।
2: इन 5 प्रकार की तुलसी विधि द्वारा अर्क निकाल कर तुलसी का निर्माण किया गया है। यह संसार की एक बेहतरीन एंटीऑक्साइड, एंटीबायोटिकल एवं एंटीवायरल, एंटी फ्लू, एंटीबायोटिक, एंटी इफ्लेमिस्ट्री व एंटी डिलीज है। तुलसी अर्क के बाद 1 बूंद 1 गिलास पानी में या 2 बूंद 1 लीटर पानी में डालकर 5 मिनट के बाद उस जल को पीना चाहिए। इससे पेयजल विष और रोगाणुओं से मुक्त होकर स्वास्थ्य वर्धक पेय हो जाता है। तुलसी अर्क 200 से अधिक रोगों में लाभदायक है, जैसे कि फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, जुखाम, खांसी, फ्लैग, मलेरिया, जोड़ों का दर्द है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर, शुगर, एटर्जी, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, जलन, मूत्र संबंधी रोग, गठिया, दम, मरोड़, बवासीर, अतिसार, आँख का दर्द, दाज, खाज, खुजली, सर दर्द, पायरिया, नकसीर, फेफड़े का सूजन, अल्सर और हार्ट ब्लॉकेज आदि में। इस प्रकार से तुलसी के जो मुख्य रूप से स्वस्थ कर देता है इन रोगों में, रोगों को तुलसी अर्क से स्वस्थ हो जाते हैं। तुलसी एक बेहतरीन विषनाशक तथा शरीर हटा के विष टॉक्सिन को बाहर निकाल देती है। टॉक्सिन्स हमारे बॉडी बनाती है। योग में हम लोग कपालभाति से टॉक्सिन को बाहर करते हैं या स्वेटिंग के अनुसार स्वेटिंग करते हैं, जैसे स्वेटिंग होती है उससे टॉक्सिन बाहर होते हैं। तो तुलसी के अर्क को पानी में थोड़ा मिला के पिया जाए तो टॉक्सिन्स उससे भी बाहर निकलते हैं।
4: यानी कि तुलसी के दल, तुलसी के पत्ता को,
2: नहीं, तुलसी का पत्ते का अर्क बनता है, उबाला जाता है उसको।
4: अच्छा।
2: डिस्टिलेशन प्लांट में।
4: अच्छा।
2: और जो डिस्टिलेट हो जाता है ऊपर का जो भाप होता है उसको डिस्टिलेट बोलते हैं।
4: अच्छा।
2: उसका जो 2 बूंद उसमें डाल दिया जाता है तो उससे ठीक हो जाता है, अर्क उसको बोलते हैं।
4: अच्छा।
2: तुलसी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाती है।
4: स्मरण शक्ति
2: यानी जो हमारी याददाश्त है, जैसे कुछ चीज करे और सब भूल जाए।
0: हाँ।
2: तो वो न चाहे भूले, याद रहे, वो तुलसी वो उसको भी ठीक करती है।
0: मुझे भी पीना पड़ेगा राजेंद्र जी, मैं भी टेलीफोन भूल जाता हूँ आज।
2: हाँ, तो आपको ब्राह्मी और तुलसी दोनों चीज चाहे पिए।
0: तो दोस्तों ये बात हो जाता कि भूलने के लिए भी कुछ हंसी मजाक भी हो जाता है कार्यक्रम में, पर ये इनके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो आगे राजेंद्र जी क्या कहते हैं?
2: आगे कहते हैं कि तुलसी शरीर के लाल रक्त सेल्स यानी हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में अत्यंत सहायक होता है,
4: यानी कि रोद ब्लूत लेखांपियस।
2: हाँ, उसको बढ़ाने में भी अत्यंत सहायक होता है तुलसी। और तुलसी भोजन के बाद एक बूंद सेवन करने से पेट संबंधी बीमारियां बहुत कम लगती है। तुलसी के 4-5 बूंदे पीने से महिलाओं को गर्भावस्था में बार बार होने वाली उल्टी की शिकायत ठीक हो जाती है। आग के जलने व किसी जहरीले कीड़े के काटने से तुलसी को लगाने से विशेष राहत मिलती है।
0: तो राजेंद्र जी, इतना संदेश आप दे रहे हैं और यहाँ पर गुलजार जी का वर्ड्स यानी कि उनका कहे हुए, जो वक्त बीत रहा है वो सिर्फ वक्त नहीं है, वो जिंदगी भी है। तो राजेंद्र जी, इस पे हम सबको ध्यान देना है। और अभी तो हमारा न्यूज़ और कमर्शियल जो, उसको भी ध्यान देना है। तो पहले हम सब वो चला देते हैं और फिर दोस्तों आज कार्यक्रम मज़ेदार और एक कार्यक्रम है जिसमें अभी काफ़ी संदेश बाकी पड़े हुए हैं जो अभी राजेंद्र जी और शांता जी मिल करके और हम भी साथ में हैं स्टूडियो में भी, विमान भी जो है। तो अभी हम सब और भी संदेश आपके लिए रखने वाले हैं, पर उस ओर बढ़ने से पहले राजेंद्र जी, पहले आप कमर्शियल और न्यूज़ की ओर।
2: जरूर।

0: फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
1: कहने के तो ये है कि किसी ने भेजा कि जिसके पास एक अच्छे दोस्त है ना, जिसके पास एक अच्छे दोस्त है उसे किसी भी दर्पण की जरूरत नहीं है।
2: आईना। और आईना ये खुद कहता है, नाम खुद कहता है, जो एक बार दिखाई दे और फिर से दोबारा नहीं आता। आईना।
1: तो आगे का कार्यक्रम में क्या सुनाने वाले हैं राजेंद्र जी? आप
0: आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए आगे की ओर चलते हैं। दमा व खांसी में तुलसी के दो बूंदे थोड़ी सी अदरक के रस के साथ शहद से मिलाकर सुबह दोपहर शाम सेवन करें तो दमा ठीक हो जाता है। यदि मुंह में से किसी प्रकार की दुर्गंध आती हो तो तुलसी की एक बूंद मुंह में डालकर दुर्गंध दूर हो जाएगी। दांत का दर्द, दांत में कीड़ा लगना, मसूड़ों में खून आना, तुलसी के 4-5 बूंद पानी में डालकर कुल्ला करना चाहिए। दांत का दर्द, कान का दर्द, कान का बहना और तुलसी हल्का गर्म करके एक एक बूंद कान में टपकाइए। नाक में पीनूस रोग हट जाता है, इसके अतिरिक्त फोड़ी फुंसियाँ भी निकल आती है। दोनों रोगों में बहुत तकलीफ होती है। तुलसी को हल्का सा गर्म करके एक एक बूंद नाक में टपकाइए। गले में दर्द, गले व मुँह में छाले, आवाज़ बैठ जाना, तुलसी के 4-5 बूंद गर्म करके पानी में डालकर कुल्ला करना चाहिए। सर दर्द, बाल कहना, बाल सफ़ेद होना व सिकरी तुलसी की 8-10 मिलीलीटर हर्बल हेयर ऑयल के साथ मिलाकर सर, माथे तथा कनपट्टियों पर लगाएं। कनपट्टी मतलब ये कान के बगल में,
1: कनपट्टी मतलब बोले तो कान।
0: हाँ, कान।
1: सूरीनाम में ऐसे होते थे ना, बोले अबे कान कैसे बोले पे कनपट, कनपटिया पे लगा बे ना।
0: हाँ।
1: ऐसे। हाँ। और राजेंद्र जी बड़ा जोर से मारते थे।
0: हाँ।
1: वहाँ स्कूल पे भी।
0: हाँ।
1: कभी बदमाशी हो जाता था ना तो कान पकड़ के इसे मरोड़ देते थे। तो देखो अब जानते थे हम सब, जो जानते कि तुलसी का और उसका यानी कि बनाकर कुछ लगाना चाहिए ना गार के।
0: तुलसी के 8-10 बूंदे मिलाकर शरीर में मलकर रात्रि में सोए तो मच्छर भी नहीं काटेंगे।
1: मच्छर भी।
0: कूलर में पानी में तुलसी के 8-10 बूंद डालने से सारा घर विषाणु और रोगाणु से मुक्त हो जाता है तथा मक्खी मच्छर भी घर से भाग जाते हैं। जुएं व लीखे तुलसी और नींबू का रस समान मात्रा में मिलाकर सर के बालों में अच्छे तरह से लगाएं, 3-4 घंटे तक लगा रहने दें और फिर धोएं अथवा रात्रि को लगाकर सुबह सर धोएं, जुएं व लीखे सब मर जाएंगी। त्वचा की समस्या में नींबू रस के साथ तुलसी के 4-5 बूंदे डालकर प्रयोग करें। त्वचा यानी
2: चमड़ा, हाइट,
1: हाइट ना,
0: स्किन,
1: स्किन,
2: हाइट,
0: स्किन प्रॉब्लम के लिए तुलसी में सुंदर और निरोग बनाने की शक्ति है। यह त्वचा का कायाकल्प कर देती है। यह शरीर के खून को साफ करके शरीर को चमकीला बनाती है। तुलसी की 2 बूंदे एलो जैम क्रीम में मिलाकर चेहरे पर सुबह व रात को सोते समय लगाने पर त्वचा सुंदर व कोमल हो जाती है तथा चेहरे से प्रत्येक प्रकार के काले छेरी, छाइयाँ, कील, मुहासे व झुर्रियाँ नष्ट हो जाती है। सफ़ेद दाग, 10 मिलीलीटर तेल व नारियल तेल के साथ तेल में 20 बूंदे तुलसी डालकर सुबह व रात सोने से पहले अच्छी तरह से मले। तुलसी के नियमित उपयोग से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होने लगता है, रक्त के थक्के जमने कम होते हैं व हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम भी हो जाती है। तुलसी को किसी भी अच्छी क्रीम में मिलाकर लगाने से प्रसव के बाद पेट पर बनने वाली लाइनें, स्क्रैच मार्क्स दूर हो जाते हैं। सेहत भरी बातें, योग व प्राकृतिक चिकित्सा के लिए सीधे तुलसी दल से जुड़े और उसको आगे की तरफ करें। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तुलसी के बारे में?
1: ना, ना, नहीं कहना चाहूँगा तुलसी के बारे में, क्योंकि मैं इधर ये शांता जी भी अब उंगली उठा दिए, तो पहले लेडीज फर्स्ट।
0: हाँ।
1: राजेंद्र जी, तो शांता जी पहले।
3: हाँ जरूर।
2: हाँ तो मैं तुलसी के बारे में अभी कुछ शब्द कहूंगी डच भाषा में। तुलसी उग बकेंत आस है लख बासिलिकम एसन है लख प्लांट एट इंडिया इन हिंदुइज्म सेन तुलसी ब्लादरन एन एसेंशियल अंडरटेल इन द फरेरिंग फन विष्णु जी कृष्ण जी एंड राम जी नेत आस हेनप इस ओक तुलसी एन प्लांट दी फन वेग सेन फरमेन द थेरापेटिसे पोटेंशियल इन द वेतनशापलके बालांगस्टेलिंग स्टाट। तो जैसे अभी राजेंद्र जी तुलसी के महत्व बताए कि इतना ढेर थे, तो ये भी वेतनशापलक बालांगस्टेलिंग में एक भी प्रयोग किया जाता है।
1: तो राजेंद्र जी
0: जी,
1: जैसे कि मैं भी कुछ कहने वाले थे
0: जी,
1: तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। इच्छाओं का क्या, वो तो पल पल बदलती है। और हमारा एक फास्ट जो लॉयस्ट्रार है रोटरडम शहर से, रोटरडम शहर से भाई रूपचंद जी, उन्होंने समय लेकर के और सबके लिए बनाकर ये कार्यक्रम को वो सुनते हैं, और ये कार्यक्रम को सुन करके वो अपना और मूर्ति और शंख आदि किस प्रकार से रखना चाहिए बना बना करके फोटो बना करके और एम्फलॉप में भर के हमारे लिए और आपके लिए यहाँ ला करके रख दिए हैं। तो भाई रूपचंद जी को बस यही कहना चाहूँगा कि भाई आपके और ये जो आप कोशिश करके बना करके हम सबके लिए यहाँ रोहतक शहर से और लेकर के यहाँ दनहाक में ला करके हम लोग के ऑफिस न्यूटन स्ट्रीट और 25 पे ला करके हम सब के लिए रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके हेल एरख दंकर फॉर भाई रूपचंद जी। और हम सब आगे के कार्यक्रम में देखा जाए कुछ राजेंद्र जी अभी कुछ संदेश और है या एक गीत की ओर हम बढ़ सकते हैं।
0: हाँ पहले हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर एक कहानी के माध्यम से हम अगला सुनेंगे। ये अगले प्रोग्राम जो अगला जो कार्यक्रम है उसमें कहानी तो उसको सुनेंगे, उससे पहले क्यों ना एक सुंदर सा गीत हो जाए।
1: एकदम
4: मेहनत

तो सुनने वालों, आपने सुना कि मेहनत हमारा जीवन और मेहनत ही है सब कुछ, तो चाहे कि हम लोगों को सबको मेहनत करना चाहिए। बढ़ते एक कहानी की ओर। कहानी लिखने वाले हैं डॉक्टर राव पी, यानी योग एवं चिकित्सा के डॉक्टर हैं।

0: पूछा कि इस गांव में कौन सा सुनार है जो मेरे कुर्ते में नया बटन बना सके। उस गांव में सिर्फ एक ही सुनार था जो हर तरह के गहने बनाता था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा, तुम मेरे कुर्ते का बटन बना सकते हो? सुनार ने कहा, यह कोई मुश्किल काम थोड़ी है। उसने कुर्तों को द्वारा बटन देखकर नया बना दिया। उसने कुर्ते का दूसरा बटन देखा और वैसे ही दूसरा बटन नया बना दिया और राजा ने कुर्ते में फिट कर दिया। राजा का जो कुर्ता था उसमें फिट कर दिया। राजा ने खुश होकर सुनार से पूछा कि कितने पैसा दूँ? सुनार ने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। उसने मन में सोचा कि सोना राजा का था, उसने तो सिर्फ मजूरी की बात की है और राजा से क्या मजूरी लेनी। राजा ने फिर से सुनार को कहा कि नहीं नहीं, बोलो कितना दूँ। सुनार ने सोचा कि 2 रुपये मांग लेता हूँ। तो सुनार ने यही सोचा कि जब ये राजा बार बार कह रहा है तो मैं 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर मन में विचार आया कि कहीं राजा यह ना सोच ले कि एक बटन बनाने का मेरे से 2 रुपये ले रहा है तो गांव वालों में कितना लेता होगा और कोई सजा ना दे दे, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपये की कीमत बहुत होती थी। सुनार ने सोचा। सुनार ने क्या सोचा?
1: अब आप ही बताइए राजेंद्र जी, क्या सोचा? क्योंकि सुनार के पास तो मैं था ही नहीं। शमता साहिब बैठे होंगे उसके पास।
0: सुनार ने फिर राजा से सोच विचार कर कहा कि महाराज जो भी आपकी इच्छा हो दे दो। अब राजा तो राजा था
2: जी।
0: उसको अपने हिसाब से देना था
2: जी।
0: कहीं देने में उसकी इज्जत खराब ना हो जाए
2: जी।
0: और उसने अपने मंत्री को कहा कि इस सुनार को 2 गांव दे दो।
2: अच्छा,
0: यह हमारा हुक्म है
2: जी। यानी कि सुनार अपने तरफ से सोच रहा था कि वो कम ना दे दे और जो बनाई बटन वो सोच रहा कि हम ज्यादा ना मांग ले।
0: नहीं, राजा ये सोच रहा था कि राजा का दिया हुआ तो क्या वो 2 रुपये थोड़ी देगा, वो तो कुछ बड़ा ही देगा ना। वो सुनार सोच रहा था कि मैं 2 रुपये मांगने से ये ना हो जाए कि राजा कहे ये इतना मेरे से ले रहा था और उसे कितना लेता होगा। कन्फ्यूजन था
2: जी।
0: यहाँ सिर्फ 2 रुपये की बात मांग सोच रहे थे मगर राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। इसी तरह जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ते हैं तो वह अपने हिसाब से देता है और मांगते तो सिर्फ हम मांगने में ही कमी कर जाते। देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाहता है लेकिन हम अपनी हैसियत से बड़ी तुच्छ वस्तु मांग लेते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि ईश्वर को सब कुछ अपना समर्पण कर दो, उससे कभी कुछ मत मांगो। जो आपने आपको दे दे, अपने आप में आपको दे दे, बस उसी से संतुष्ट रहो। फिर देखो इसकी लीला, वारे के न्यारे हो जाएंगे। जीवन में धन के साथ संतुष्टि का होना बहुत जरूरी है। तो इस कहानी के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने समझा होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे संजय जी?
1: नहीं, कहने के तो ये है कि राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि उम्मीद भी उन्हीं से लगाइए।
0: हाँ,
1: उम्मीद भी उन्हीं से लगाइए, जाती है जहां से कुछ उम्मीद दिखती है।
0: हाँ।
1: तो भगवान से भी उम्मीद लगाएंगे तो वहां से आपको, जैसे कि अभी संदेश द्वारा और सुनने को प्राप्त हुआ, तो जरूर बढ़िया। और इच्छा कुछ और था और देखो कितना ज्यादा आपको प्राप्त हुए। राजेंद्र जी, ऐसे हुआ तो आज तो हम सब कुछ ज्यादा ही बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी सुनने वालों के साथ हम सब जुड़े हुए हैं।
0: हाँ।
1: और ऐसा हुआ कि जैसे कि उम्मीद के बारे में बात हो रहा था तो एक जंगल में 3 वृक्ष साथ साथ खड़े थे।
0: हाँ।
1: बहुत बड़े बड़े थे, बड़े बड़े वृक्ष थे और बगल बगल में खड़े थे और काफी समय से था। तो वो वृक्ष जो कि एक साथ में बगल बगल में खड़े होते थे, उसी में से एक वृक्ष ने अपना और ये रखे कि मेरा ये ख्वाहिश है, कि मैं जब एक ना

0: एक दिन काटा जाऊं तो मेरे लकड़िये से और एक ऐसा चीज बनाया जाए जिसे हम संदूक कहते हैं, जिसमें सोना जवाहर यानी कि बढ़िया बढ़िया चीजें सी राद दोस बनाया जाए। तो एक एक के सुन करके दूसरा वृक्ष भी अपना और यानी कि अपना ख्वाहिश भी पेश किया, क्योंकि एक जो अपना सुनाते हैं तो दूसरा का भी सुनाने का इच्छा हो जाते हैं ना,
1: जरूर।
0: तो दूसरा कहते हैं कि मेरा ख्वाहिश ये है कि जब मैं काटा जाऊं तो मेरा लकड़ी से इतना बड़ा जहाज बनाया जाए जिसे हम इस देश से और देशों में जा सके। अब जब एक अपना ख्वाहिश पेश किया तो दूसरा भी अपना सुनाया, तो तीसरा जो बगल में खड़ा था तो उनका भी यही इच्छा हुआ कि मैं भी तो कुछ सोच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्वाहिश ये है कि मैं यहाँ खड़ा रहूं और इतना ऊंचा हूँ, इतना लंबा हूँ कि हमें भगवान को प्राप्त हुए
1: सीधा
0: सीधा
1: डायरेक्ट
0: डायरेक्ट। ऐसा हुआ राजेंद्र जी, एक दिन लकड़हारा आता है ना, लकड़हारा आता है तीनों पेड़ों को काट देता है, गिर जाता है। पेड़ों गिर जाता है तो पहला पेड़ के पेड़ों को अपने अलग अलग जगह ले जाते हैं और पहला पेड़ का वृक्ष का जो ख्वाहिश था उनके लकड़ियों से एक संदूक बनाया जाए। उन लकड़ी से बनाया गया एक गाय के गाय का घर में होता है जिसमें चारा रखा जाता है ना,
1: चरी
0: चरी, तो सरनाम में हम लोग कहते चरही बनावल जाता है ना शांता जी, चरही जिसमें गाय का और चारा
2: घास धरा धरा
0: जाए, तो उससे बनाया गया गाय का चरही।
2: हाँ, कैशमेस में उसमें क्रेब
0: यही उस ओर बढ़ना है बेहतर। अच्छा। राजेंद्र जी, अब ये लकड़ी सोचता है ये तो मेरा ख्वाहिश नहीं था, तो दूसरा लकड़ी को काट करके और बनाया दिया गया एक छोटा सा नाव, कोरियाला जो जी बोले ना,
2: बोट।
0: हाँ, छोटा सा बोट। तो उसे वो वृक्ष भी कहते कि ये तो भी मेरा ख्वाहिश नहीं था। और तीसरा वृक्ष जो जिसका इच्छा था मैं यहीं पर और काफी बड़ा हूं, इतना लंबा हूं कि हमें भगवान को प्राप्त हो, तो उसने उसको काट करके एक अंधेरे कमरे में रख दिया गया था। अच्छा? तो उन्होंने भी ये सोचा कि ये भी मेरा ख्वाहिश नहीं है। पर ऐसा हुआ राजेंद्र जी,
1: जी
0: एक दिन ऐसा होता है वही और गाय के घर में और वो जो लकड़ियों बनाया गया था वो चरही उसी को काट करके एक पलना बनाया गया। पलना यानी कि अनस्कॉमल फॉर बेबी, तो उसी में एक बच्चा को रखा गया,
1: पलंग
0: पलंग। तो उसी पे एक नया जीव, उसी प्रकार से एक नया जीव को उसी लकड़ियों पे रखा गया। तो उन्होंने सोचा मेरा तो ख्वाहिश था एक संदूक बनने के लिए यानी कि जवाहर सोने आदि रखने के, पर उससे भी बड़ा देखो आज मेरे लकड़ियों पे एक नया जीव जो उस पे और लेट रहे है, तो अति प्रसन्न हुआ वो। इसी प्रकार से दूसरा को जो और बना दिया गया था एक छोटा सा नाव, एक छोटा सा बोट, कोरियाल ना। तो एक दिन ऐसा होता है तीन तीन राजा दौरा दौरा आता है और देश में बड़ा आक्रमण हो रहा था और राजा आते हैं बस वो नाव में बैठ जाते हैं और नाव खेवने लगते हैं, पानी हल्फा काफी ऊंचा हिल हिल करके, पर वो तीनों राजा इस ओर से और दूसरे ओर पार हो गए थे तीनों राजा का और जा करके जान बच गया था। तो वो भी लकड़ी सोचे कि मेरा इच्छा था एक बड़ा सा नाव बनने के लिए, पर आज देखो मेरे छोटा से नाव में तीन तीन राजा का और जा करके और जान बच गया। और इसी प्रकार से तीसरा वाला जो पेड़ था जिनका इच्छा था मैं यही खड़ा रहूं और मेरे लंबाई इतना ऊंचा होए जहां तक कि हमें भगवान को प्राप्त हो सके, तो उन्हें काट करके अंधेरे कमरे में रख दिया गया था। तो उन लकड़ियों को ऐसा हुआ एक दिन और जा करके लोग लाते हैं लकड़ियों को खीले मार करके और उसी पे जा करके एक व्यक्ति को और खीले से गाड़ देते हैं। वो कौन था शांता जी? अपन क्रॉस
2: यीशु क्रिस्टस।
0: हाँ, तो देखो उनका भी इच्छा वो था कि हमें भगवान को प्राप्त करना है और स्वयं भगवान को वो लकड़ियों पे और जा करके खीला के साथ उसे यीशु को उस पे क्रॉस किया गया। तो इसी प्रकार से हमारे संत मुनि और ऋषियों ने हम सब के लिए अच्छे अच्छे संदेशों जो बना बना कर हम सब के लिए छोड़े हैं, हमें इस पर ध्यान देना है कि हमारा इच्छा कभी कुछ और रहता है पर भगवान हमें उससे भी अच्छा और जा करके अपना इच्छा को देते हैं। तो शांता जी आप कुछ कहने वाले हैं?
2: हाँ, हम अगर आपके विचार जो सुने ना, आपके कहानी भी जो इस पे जो लागू है ना, कि इसमें सोच अपना, अभी हम शुरुआत में करें ना ध्यान, कि ध्यान का पर्दा अपना हटाइए, अपना सोच अच्छे डायरेक्शन में ले जाओगे तो अच्छे चीज भी प्राप्त होगा।
0: जी जरूर जरूर। राजेंद्र हाँ। जी शांता जी भी सुना चुका है अपने ओर से, तो क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं,
1: क्यों ना एक सुंदर से नगमा की ओर बढ़ते हैं, और जिसके बोल हैं, दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा।
0: दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा।
1: हाँ,
0: जीना पड़ेगा,
1: जरूर जीना पड़ेगा। ये फिल्म 1957 में बनी थी मदर इंडिया सिंगर के नाम से,
2: जीना नहीं पड़ेगा।
1: और इसमें लता मंगेशकर और उषा मीना जी ने बहुत ही सुंदर अपने स्वरों में उसको उद्गृत किया है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को ये सुंदर सा नगमा सुनाया जाए, जिससे कि वो प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए।
0: सभी सुनने वालों ये जानते हैं कहाँ से निकला है।
1: हाँ, ये निकला तो शांता जी के पिटारा से।
2: फिल्म का नाम मॉडर्न इंडिया।
1: हाँ,
0: तो चला।

0: दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, तो जीना तो सबको पड़ेगा ही। संजय जी, आप क्या बोलते हैं जीने के विषय में?
1: जीने के विषय में क्या कहूं मैं राजेंद्र जी, क्योंकि जीना तो सभी को पड़ेगा। और शांता जी, और आपने इतना सुंदर रूप से गीत में भी और भी जान डाल दिए, तो क्यों ना हम कार्यक्रम के थोड़ा से और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि
2: क्योंकि जीवन सबको प्यारा है, सबको प्यारा है जीवन।
0: हाँ, जीवन तो है ही, बगैर जीवन तो कुछ भी नहीं है। तो अगला जो पड़ाव है एक कहानी का है, फिर दोबारा से क्यों ना हम एक गुड़ का भोग की कहानी सुने।
1: जी,
0: सुनते हैं कहानी, सुनिए। किसी गांव में छज्जू मल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था।
1: छज्जू मल उसका ये नाम गुड़, गुड़ बेचने, गुड़ कहते हैं किसको राजेंद्र जी?
0: शुगर, गुड़।
1: शुगर, शांता जी आपको पता?
0: शुगर वो
1: बोले तो
2: जगरी किन।
1: हाँ
2: किन,
1: तो छज्जीमल जी का वृतांत है।
0: हाँ, उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती, उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी
2: जी।
0: उसके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर फिर वह अपने काम वापस जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते, बाबा अब हम अच्छा कमा लेते हैं, आप अब घर पर बैठे। परंतु छज्जूमल न माना। उसकी पत्नी रोज गोपाल जी को भोग लगाती थी, उसको तो भोग लगाना आता ही नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता। ठाकुर जी तो ठहरे मीठे के शौकीन, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब रोज काम जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ भोग लगा देता था। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोला ठीक है, तो उन्होंने गोपाल जी को भी अलमारी में भूल बस रख दिया। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग नहीं लगता।
1: राजेंद्र जी, अब थोड़ा अब इसको ये वृतांत है कि इतना सुंदर वृतांत है, इसे थोड़ा हिंदुस्तानी, हमारे सरनामी, जैसे कि हमारे सरनामी भाषा अब ऑफिशियल भाषा होने वाले है ना।
0: हाँ,
1: तो थोड़ा से सरनामी में थोड़ा और इसे
0: हाँ, सरनामी में यही रहेला कि जो छज्जूमल जी थे,
1: हाँ जी,
0: वो अपने गुड़ का भोग लगाए दिए हर दिन ठाकुर जी को
1: रोज।
0: लेकिन एक दिन ना लगा, वो एक दिन जब घर रिपेयर हो रहा था घर, तो उसने अलमारी में रख दिया अपना।
1: हाँ, कास्ट में, कास्ट
0: हाँ, में रखेला गोपाल जी को। और जब कास्ट में रखेला तो वो न चाहे भोग लगाए, कुछ करे, अपना जाए,
1: चले गए।
0: तो आगे का वृतांत है कि छज्जू मल रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तभी छज्जू मल की आंख लग गई। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ न दोगे? छज्जू मल ने एक दो बार अनसुना कर दिया। उसे लगा कि कोई सपना है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाता जा रहा था और बोल रहा था, अचानक वह उठा और देखता है कि 6-7 साल का बालक उसे कह रहा है कि बाबा आज गुड़ न दोगे। तो छज्जूमल मन में सोचने लगा कि मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ न दिया। फिर उसने सोचा कि गांव में ही किसी का बच्चा होगा। छज्जूमल ने कहा कि हाँ बेटा ले लो, तो उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक गुड़ को मुंह में डालकर आहा आहा मीठा मीठा कहकर वहाँ से भाग गया। अब तो रोज ही वह बालक छज्जूमल को मिलता, उससे गुड़ लेता और नाचता गाता मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जूमल भी बच्चा समझकर उसको रोज गुड़ दे देता। अब घर का काम पूरा हो गया, तो उस दिन घर में हवन पूजन रखा गया। छज्जूमल अब गुड़ बेचने न गया, परंतु वह बालक तो अपने समय पर उस जगह पहुंच गया। अब छज्जूमल वहां न आया। बालक ने तो घर जाकर मैया की जान खा ली और ता ता थैया मचाने लगी। बोली मुझे गुड़ ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फी मिठाई सब लाकर दी, लेकिन वह तो कहते मैं तो गुड़ ही खाऊंगा। मैया से बालक का रोना सहन न हुआ और छज्जू मल के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई। घर जाकर कहती, बाबा मेरे बालक हो तो आपने गुड़ की आदत डाल दी। उन्होंने बोला कि मेरा बालक को आपने गुड़ की आदत डाल दिया, आज आप आए नहीं, न आए तो गुड़ खाए बिना वह मान नहीं रहा। छज्जू मल का उस बालक पर बड़ा प्यार आया, उसने उसको अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगे। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जू मल की आंखों में अश्रुधारा बहे निकली। हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया।
1: राजेंद्र जी, इस पे तो बस एक गाना चलाना चाहिए, चलाना ही चलाना चाहिए, क्योंकि ये वृतांत अभी बहुत मिठास की ओर जाने वाला है।
0: हाँ जरूर, इस पे एक
1: दोस्तों ये वृतांत मिठास की ओर बढ़ने से पहले जरूर मैं एक छोटा सा वृतांत और सुना देता। जिंदगी की दास्तान भी कितना अधूरा है ना राजेंद्र जी।
0: हाँ,
1: कि खुशी देखना खुश होने से और ज्यादा जरूरी है। तो अब देखो खुशी क्या करवाने वाले है। अभी पहले हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में वो वृतांत हम सब आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों सुनते रहना, ये फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है और यहाँ जो कार्यक्रम लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, ज्योति का प्रकाश, ज्योति का प्रकाश जो 188 देशों में सुना जा सकता है, इसमें हर बार कुछ ना कुछ हमारे विशेषज्ञों लोग और हम सब के लिए सुंदर सुंदर संदेश रखते हैं और हम सब ये आपके लिए और यहाँ से ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो अभी आपके लिए आगे कार्यक्रम सुनाया जाएगा, पहले हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: जरूर।

0: प्रेम जाल है, प्रेम नगर है, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। कहानी थोड़ा सा रह गई थी कहानी की, और बढ़ते हैं आगे की तरफ।
1: क्योंकि वो जो गुड़ बेचने वाला का नाम कैसे था राजेंद्र जी?
0: गुड़ बेचने वाले का नाम छज्जूमल।
1: छज्जूमल, शांता जी, छज्जूमल जी जो गुड़ बेचते थे,
2: छज्जूमल।
1: हाँ,
0: तो छज्जूमल जी ने हवन पूजन के बाद फिर गोपाल जी की मूर्ति को रखा। अगले दिन छज्जूमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चले गया। रास्ते में उसी जगह पर रुका। अब तो उसे भी उस बालक का गुड़ खिलाने की जल्दी थी, परंतु वह बालक आया ही नहीं। ऐसे ही 3-4 दिन बीते, जो उसका मन बहुत बेचैन था कि वो बालक क्यों नहीं आया, कि कहीं बालक बीमार तो नहीं हो गया। उसने गांव जाकर सबको बालक के बारे में पूछा, तो सब ने कहा ऐसा तो यहाँ कोई भी बालक नहीं रहता। वह हैरान परेशान होकर घर पहुँचा। घर पहुँचकर जब वह मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह जैसे कह रहे हों, बाबा जी मैं वही बालक हूँ। छज्जूमल का माथा ठनका कि वह सोचने लगी यह तो साक्षात गोपाल जी मुझसे गुड़ खाने आते थे। वह कहने लगी गोपाल जी धन्य हो आप। गोपाल जी की ओर देख के उसकी आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। इस प्रकार की कहानी बड़ी।
1: तो कहने के बाद ये है राजेंद्र जी की विश्वास एक बड़ा गंभीरता चीज हो जाता है ना,
0: गंभीरता चीज है।
1: ताकि क्यों विश्वास था उनके पत्नी और जा करके रोज और ठाकुर के भोग लगाते थे।
0: हाँ।
1: उसके बाद में जजुमल भी लगाने लगे, और जजुमल जब वो
0: छज्जूमल
1: यानी घर के मरम्मत के लिए और जा करके मूर्ति अलमारी में रखने से और भगवान अपना अंश तो लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे, और फिर बाद में जा कर के और जो ये पता चला कि वो स्वयं भगवान था और बालक के रूप में जा कर के और वो और गुड़ को और लेते थे। तो दोस्तों, सुंदर संदेश जो राजेंद्र जी हम सब के लिए रखे। और कार्यक्रम में पता नहीं कौन सा गीत अभी और शांता ने अपने पिटारा से भर के लाए हैं, पर शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं।
0: जरूर।
2: हाँ, ये कहानी सुनकर मेरी आंख भी नम हो गई है।
1: नम हो गई है शांता जी। हाँ, हाँ सही बात, क्योंकि
2: विश्वास और लगन के साथ कुछ करो तो उस पर जरूर से परिणाम होता है।
1: परिणाम जरूर होता है,
2: परिणाम के परिणाम ऐसे ही होता है। और इसके बारे में मैं कुछ धन के बारे में कहूँगी, महिमा कुछ धन के बारे में। तो वो ऐसा है संजय जी,
1: बता दो शांता जी।
2: धन से पुस्तक मिलती है ना
1: जी,
2: पर ज्ञान नहीं मिलती। और धन से आभूषण मिलती है पर रूप नहीं मिलते। और ऐसे भी कहते हैं कि धन से सुख मिलता है पर आनंद नहीं मिलता। धन से सुख मिलता है
1: पर आनंद नहीं मिलता है।
2: सुख और आनंद में फर्क है।
1: हाँ, क्योंकि राजा कंस, उसके पास सब कुछ था, सब प्रकार से सुख था, पर जब उन्होंने इस बात को सुन लिए थे कि राजन तुम्हारी बहन के 8वां पुत्र आपका वध करेंगे, तो उसका आनंद भाग गया था उसे छोड़ के
2: सब कुछ। हाँ, और आगे में है कि धन से साथी मिलती है किंतु सच्चा मित्र नहीं मिलता। धन से भोजन भी मिलता है किंतु भूख नहीं मिलता। धन से आप सब कुछ खरीद कर रख लो पर भूख नहीं लग के तो आप भोजन खा नहीं पाओगे। धन से दवा मिलती है किंतु स्वास्थ्य नहीं मिलती। खसों थे इतनी मिलती, दवा मिल जाती है पर खसों थे इतनी मिलता। धन से एकांत मिलता है किंतु शांति नहीं मिलती। धन से बिस्तर मिलता है किंतु नींद नहीं मिलती। ऐसा है कुछ धन के बारे में जो हमने कहा कि धन भला ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके प्रयोग कुछ अच्छे तरह से करना, ताकि धन भी रहे और धन से किया हुआ जो उससे हम की उससे भी हमें हासिल होवे। तो इतने था मेरे धन के बारे में।
1: अच्छी रूप से संदेश दिए शांता जी, क्योंकि राजेंद्र जी भी गीत के ओर बढ़ने वाले हैं। तो राजेंद्र जी पहले गीत चला देते, फिर उसके बाद में देखा जाएगा कि हम सब क्या और रखने वाले हैं, क्योंकि अभी तो प्रोग्राम बाकी है ना।
0: हाँ

0: दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुना कि राजेंद्र जी ने कौन सा गीत चलाए, और राजेंद्र जी मैं देख रहा हूँ कि दूसरा गीत की ओर बढ़ने वाले हैं, तो अब लगातार हमें समय पे ध्यान देना है। तो राजेंद्र जी चला देते हैं और देखते हैं कौन सा गीत आप रखने वाले हैं।
1: हर बार की भांति इस बार भी लागी छूटे ना अब तो सनम, क्योंकि जैसे ही हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर आने लगता है वैसे ही इस गाने से पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे पहुंचे
0: और समय पे हमें ध्यान देना है। तो राजेंद्र जी चला दो
1: जरूर।

इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों की चिराग। आपकी सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम स्वीकार करे इस ज्योति का प्रकाश। ज्योति का प्रकाश के प्रोग्राम में सुनने वाले जो आज यहाँ से हम आपके लिए पेश किए साथी।

रागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जिया चाहे तेरी कसम। तो जो जैसे ही हमने आपको बताया कि हम लोग इस तरफ आते हैं, तो आते आते यहाँ पे जब ये गाना चलता है तो इसी से पता चलता है कि हम कहाँ पहुँच गए। तो आज का जो संदेश है वो ये है कि इफ़ यू सक्सीड इन चीटिंग समवन, डोंट थिंक दैट द पर्सन इज फूल, रियलाइज दैट द पर्सन ट्रस्टेड मोर मच देन यू डिजर्व। अगर आप अपनी चालाकी से या चतुराई से किसी व्यक्ति से जीत भी जाएं, लेकिन ये मत सोचना कि वह व्यक्ति मूर्ख है या मूर्ख था। रियलाइज करना कि आप उस व्यक्ति वो व्यक्ति आप पर विश्वास ज़्यादा करता था, इतना ज़्यादा करता था कि जिसके कि आप लायक नहीं थे। तो रेडियो फाहुन के सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, और फिर मिलेंगे अगली बार इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए सबको नमस्कार।

0: इधरे बदंग फॉर लास्ट
1: आज का कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश यहाँ पर अपने समाप्ति के सीमा पे आकर पहुंच चुके हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। दोस्तों आज के कार्यक्रम जो हम सब यहाँ साथ में मिल करके और किए हैं, हमारे साथ देने वाले शांता खिमाई और पनील के पीछे भाई राजेंद्र सिंह जी हमारे साथी और विमान भगवंत जो साथ दिए हैं, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही रखता हूँ कि कुछ ना कुछ संदेश आपके पास जरूर पहुँचे होंगे। फिर सभी को एक शुभ रात्रि, नमस्कार।

देखा जाए आशा भोसले और इसमें आशा भोसले का सॉन्ग, आशा परेख और धर्मेंद्रा ने इसमें काम किया है, और इसका जो लायरिक्स है शंकर जयकिशन है, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गाना है। चलो हम सब मिलके सुनते हैं हमारे सुनने वालों, एफर ग्रीन लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सब चुन है।